ये था श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थी अनुराधा पौडवाल, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष चौबे की वार्ता, कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। सात बजकर 7:35 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 भोपाल से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

पांची लाल कुशवाहा और साथियों के गाए लोकगीत आपको सुनवाएंगे सुबह 9 बजे। 9:15 पर आप सुन सकेंगे अनूप जलोटा के गाए भजन। सुबह 9:30 शास्त्रीय संगीत के तहत आज आप सुन सकेंगे विठल राजपुरा का पखावज वादन, राग होगा ताल होगा चौताल। श्रोताओं की पसंद के गीत हम सुनवाएंगे पहले MH हॉटलाइन में और उसके बाद 10:30 से मन भावन कार्यक्रम में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत दिन में 12 बजे, 2 बजे और फिर 2:30 पर। दिन में 1 बजे स्टूडियो से प्रसारित करेंगे महिला कार्यक्रम। इसमें आज योजना क्रम में बताएंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। साथ ही सुनिएगा महिलाओं में दर्द की समस्या, कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर ऋतु पौराणिक से शिखा की बातचीत।

0: रूप लावण्य क्रम का विषय होगा केमिकल को कहें विदा। फैमिली फिटनेस में विषय है मौसमी फलों के सेवन से रहें स्वस्थ, आपकी सुरक्षा आपके हाथ। इसमें बताएंगे मोबाइल फोन खो जाने पर क्या करें। शाम की सभा शुरू होगी 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ। इसमें आज का क्रम है शीर्षक संगीत और आज का शीर्षक है कंगन। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 बजे सुगम संगीत के तहत आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई गजलें। 6:45 पर सुनिएगा श्याम कुमार चौबे के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा 7:20 पर। इसमें सुनिएगा परिचर्चा, विषय होगा पशु को एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से बचाएं, और इस बारे में बताएंगे डॉक्टर आर के बघेरवाल और डॉक्टर जायसी जोगी। ये था कार्यक्रम विवरण। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।
1: प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। आर्थिक विषयिकया मंत्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मंत्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मंत्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांक पर्यन्तं यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी यूएई अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्य राष्ट्राणां प्रतिनिधिदल प्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEETUG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्राम नासिकतः, अन्ये अनेके च संकिताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनांके राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् घोषणैः अकरोत्। सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य सीबीआई इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः। उत्तरप्रदेशे धूलि प्रभञ्जनेन सह विद्युत प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गत चतुर्विंशति होरासु त्रिचत्वारिंशत् जनाः मृताः। भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचनास्ति। पश्चिमबंग सर्वकारेण आलुकं पलाण्डुः फल शाकानि तैलबीजादिभिः सह अन्य धान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः। अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्तायाम् आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और

0: और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारे भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों

0: की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
2: फूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माता बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक AI तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण

शिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसेट द्वारा ग्राम साड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। आज का विषय है ऋग्वेदी भाष्य भूमिका। विशेषज्ञ हैं खुशबू साहू।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका दयानंद सरस्वती द्वारा रचित किताब के पन्नों को हम आज पलटने जा रहे हैं। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये 19वीं सदी का एक ऐसा बौद्धिक विस्फोट है जिसने भारत की और खास तौर पर हिंदू समाज की सोचने की दिशा बदल दी थी। मैं बात कर रही हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती की कालजयी रचना ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की। अक्सर जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि होती है, जंगल में बैठे साधु, कुछ मंत्र और ढेर सारे कर्मकांड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि दयानंद ने वेदों को खोला तो उन्हें वहाँ कर्मकांड नहीं बल्कि विज्ञान मिला, उन्हें वहाँ जाति पाति नहीं बल्कि समानता मिली। स्वामी दयानंद के उन्हीं तर्कों और प्रमाणों को बहुत गहराई से आज हम समझेंगे। उस समय मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वान और सायण जैसे भारतीय भाष्यकार वेदों का ऐसा अर्थ कर रहे थे जिससे वेद गडेरियों के गीत या जादू टोने की किताब लग रहे थे। स्वामी दयानंद ने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि वेद महान है, उन्होंने तर्क भी दिया कि वेद महान क्यों है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा तर्क है वेदों की उत्पत्ति। स्वामी जी से पूछा गया कि वेद ईश्वर का ज्ञान क्यों है, कोई इंसान किताब क्यों नहीं। यहाँ स्वामी जी ने एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तर्क रखा। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही एक सुनसान टापू या कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ कोई न हो और उसे खाना पीना मशीन से मिले लेकिन उससे कोई बात न करे, तो क्या वो बड़ा होकर कोई भाषा बोल पाएगा? जवाब है, नहीं, वो सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें निकालेगा। स्वामी जी का यह तर्क था कि ज्ञान के बिना ज्ञान पैदा नहीं होता।

पता। नॉलेज कम्स फ्रॉम नॉलेज, जैसे आग से ही आग लगती है वैसे ही पढ़ाने वाले के बिना कोई पढ़ नहीं सकता। तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब पहले इंसान यानी कि आदि मानव पैदा हुए, तो उन्हें भाषा और जीने का तरीका किसने सिखाया? उनके पास कोई टीचर नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तब स्वामी जी सर तर्क देते हैं कि उस समय परम गुरु यानी ईश्वर ने ही ज्ञान की पहली किरण दी और वो ज्ञान वेद है। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने यह ज्ञान चार ऋषियों अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के अंतःकरण में दिया। यह तर्क डार्विन की थ्योरी से अलग एक डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है जो भाषा विज्ञान के आधार पर खड़ा है। अब हम चलते हैं इस किताब की उस हिस्से की ओर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, विज्ञान और सृष्टि विद्या यानी कि साइंस एंड कॉस्मोलॉजी। महर्षि दयानंद ने भूमिका में यह दावा किया कि वेदों में आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांत मौजूद हैं और उन्होंने हवा में बात नहीं की, उन्होंने मंत्रों का प्रमाण दिया। एक बहुत ही मशहूर तर्क है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। न्यूटन से हजारों साल पहले स्वामी जी ने ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ करते हुए बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। उन्होंने यजुर्वेद का प्रमाण दिया। यहाँ उन्होंने समझाया कि कैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी और अन्य ग्रहों को थामे हुए हैं और उन्हें घुमा रहा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि लोक लोकम प्रति आधार आधये, यानी हर लोक हर प्लेनेट एक दूसरे के सहारे टिका है आकर्षण के नियम से। सोचिए 19वीं सदी में जब भारत में विज्ञान की पढ़ाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, एक सन्यासी वेदों के मंत्रों से सोलर सिस्टम से समझा रहा था। यही नहीं, उन्होंने गणित पर भी बात की। अथर्ववेद के प्रमाणों से उन्होंने बताया कि वेदों में पूर्ण और शून्य का सिद्धांत है। उन्होंने विमान विद्या यानी कि एरोनॉटिक्स और तार विद्या टेलीग्राफी के संकेत भी वेदों में दिखाए। उनका तर्क था कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए इसमें भौतिक विज्ञान के नियम जैसे आग और बिजली के गुण विस्तार से बताए गए हैं, जिन्हें समझकर इंसान विमान और मशीनें बना सकता है। वेद यानी वेद आपको जंगल में भेजना नहीं चाहते, बल्कि आपको एक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़े भ्रम की ओर बढ़ते हैं, जिसका खंडन स्वामी जी ने बहुत तार्किक ढंग से किया, देवतावाद वर्सेस एकेश्वरवाद। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसका खंडन किया और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण रखा। उन्होंने कहा कि वेदों में 33 कोटि देवों की बात है, 33 करोड़ भगवानों की नहीं। उनका तर्क बहुत साफ था। देव शब्द दिव धातु से बना है, जिसका मतलब है चमकना या देना। तो जो भी चीज हमारे लिए उपयोगी है वो देवता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ये सब जड़ देवता हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। माता पिता और गुरु चेतन देवता हैं, लेकिन उपासनीय देव केवल एक है, वह है ब्रह्म या ईश्वर। उन्होंने मंत्रों का प्रमाण देकर कहा कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक व्यक्ति पिता भी है, बेटा भी है और पति भी है, वैसे ही ईश्वर जब प्रकाश देता है तो अग्नि है, जब वर्षा करता है तो इंद्र है। इस तर्क ने यह साबित कर दिया कि वेद पूरी तरह से एकेश्वरवादी है। दोस्तों, स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब के सामाजिक खंड में मिलता है। उस दौर में यह माना जाता था कि शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने इसे पाप घोषित कर रखा था। स्वामी जी ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र को प्रमाण के रूप में पेश किया, यथेमाम वाचम कल्याणम आवदानी जनेभ्यः। दोस्तों, स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब के सामाजिक खंड में मिलता है। उस दौर में यह माना जाता था कि दोस्तों
स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब की सामाजिक खंड में मिलता है।

है। उस दौर में यह माना जाता था कि वंचित वर्गों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने इसे पाप घोषित कर रखा था। स्वामी जी ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र को प्रमाण के रूप में पेश किया, यथे माम वाचम कल्याणम आवदानी जनेभ्यः। इसका अर्थ है, ईश्वर कह रहा है कि मैंने यह कल्याणकारी वाणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वंचित वर्ग सबके लिए दी है। यहाँ स्वामी जी का तर्क दिल को छूने वाला था। उन्होंने पूछा, ईश्वर सबका पिता है, क्या कोई पिता अपनी बेटी को या अपने कमजोर बेटे को ज्ञान से वंचित रखेगा? अगर ईश्वर ने सूरज की रोशनी सबको बराबर दी है, हवा सबको बराबर दी है, तो ज्ञान पर किसी एक जाति का कब्जा कैसे हो सकता है? इस एक तर्क ने जातिवाद की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाओं का उदाहरण देकर सिद्ध किया कि वैदिक काल में स्त्रियां न केवल पढ़ती थीं, बल्कि ऋषिका भी होती थीं। इसी कड़ी में उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वेद जन्म से नहीं, इसी कड़ी में उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वेद जन्म से जाति नहीं मानते, बल्कि गुण कर्म और स्वभाव से वर्ण मानते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी बनता है जब वो डॉक्टरी पढ़े, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तभी है जब वो ज्ञानी हो। अगर वो अनपढ़ है तो वो वंचित है। यह फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर वेदों की मूल देन थी, जिसे समाज ने भुला दिया था। अब हम बात करते हैं उपासना और मूर्ति पूजा की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने साफ किया कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था, यानी कि प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जो चीज हर जगह है, आप उसे एक मूर्ति में सीमित कैसे कर सकते हैं? और अगर ईश्वर निराकार है तो उसका आकार कैसे बनाया जा सकता है? उन्होंने यज्ञ की असली परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। उन्होंने इसे देव पूजा, संगतीकरण और दान के रूप में परिभाषित किया। देव पूजा विद्वानों का सत्कार करना और प्रकृति यानी कि जल वायु को शुद्ध रखना है। वैसे ही संगतीकरण समाज के लोगों का मिलजुल कर विज्ञान और कला को बढ़ाना है। वहीं दान अपनी विद्या और धन से दूसरों की मदद करना है। स्वामी जी ने उस समय चल रही पशु बलि का वेदों के प्रमाण से घोर विरोध किया। उन्होंने निरुक्त और व्याकरण के तर्क देकर समझाया कि जहाँ वेदों में अश्वमेध यज्ञ या गोमेध शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ मेध का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि संगमन या उपयोग है। उन्होंने साबित किया कि वेद अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और बलि प्रथा स्वार्थी लोगों की मिलावट है। स्पीच के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए हमें स्वामी जी के दार्शनिक सिद्धांतों को भी समझना होगा, विशेषकर त्रेतवाद। अद्वैत वेदांत मानता है कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, लेकिन महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर तर्क दिया कि तीन चीजें अनादि हैं, ईश्वर जो कि रचयिता है, जीव जो कि कर्म करता है और फल भोगता है, और प्रकृति वो कच्चा माल जिसे यह दुनिया बनी है। उनका तर्क था कि अगर सिर्फ ईश्वर ही है और हम सब ईश्वर हैं, तो पाप कौन कर रहा है? क्या ईश्वर खुद को अज्ञानी बनाकर पाप करेगा? यह संभव नहीं है। इसलिए आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष पाना है, ईश्वर में मिल जाना नहीं, बल्कि ईश्वर के आनंद को भोगना है। यह तर्क व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय करता है कि आप अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अंत में महर्षि दयानंद ने जीवन जीने की कला यानी पंच महायज्ञों की बात की है, जो इस किताब का व्यवहारिक पक्ष है। उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ को रोज 5 काम करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ यानी कि स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, देव यज्ञ हवन करना जिससे कि वातावरण शुद्ध हो, पितृ यज्ञ अपने जीवित माता पिता की सेवा करना, बलि वैश्व देव यज्ञ अपने भोजन में से अन्य प्राणियों यानी कि कुत्ते गाय पक्षी का हिस्सा निकालना,

अतिथि यज्ञ, समाज के ज्ञानी लोगों की सेवा करना, यह एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंसान को, समाज को और प्रकृति को जोड़कर रखता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से यह बात साफ है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मशाल है। स्वामी दयानंद ने हमें सिखाया कि अपनी विरासत पर गर्व करो, लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि तर्क और श्रद्धा दुश्मन नहीं है। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे साइंस के विरोधी नहीं बल्कि समर्थक हैं। अगर आप आज के दौर में भी कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको लगता है कि धर्म और विज्ञान की लड़ाई है, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब आपको एक अंधभक्त नहीं बल्कि एक तार्किक और बुद्धिमान इंसान बनाती है। स्वामी जी का संदेश साफ था, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वेदों को पढ़िए, तर्क कीजिए और सत्य को जानिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। इसके तहत आपने सुनी खुशबू साहू की वार्ता ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आरती जादून। श्रोताओं, आपके लिए हम हाजिर हैं लेकर कुछ चुनिंदा प्यारे सुमधुर गीत। शुरुआत हम कर रहे हैं तीसरी कसम फिल्म के गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

आवाज में इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है गाइड। शैलेंद्र के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले के स्वर में पड़ोसन फिल्म का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लीजिए अब सुनिए 36 घंटे फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में, समीर के बोल हैं, सपन चक्रवर्ती का संगीत।

और लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म है तीसरी मंजिल, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: सुनहरे पल।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: UAE is an important partner.
4: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: MMTPA LNG to India।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
5: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल हो

0: धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
7: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2,441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाईं। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो

बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। आज सुबह आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल पर सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटनों की बीमारी से बचाव, खानपान, व्यायाम और सही आदतें। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रावत से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। सूचना समाप्त हुई। 648 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम सुन पा रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। लीजिए श्रोताओं, सुबह के 9 बज चुके हैं। अप्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पांचीलाल कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

0: जमुना दीन पाव पखारा गाई गाई न प्रभात
1: रे भाई जमुना दीन पाव पखारा गाई गाई न प्रभात।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए पांची लाल कुशवा और साथियों के स्वर में एक और निमाड़ी लोकगीत। ये गीत समर्पित है नर्मदा मैया को।

ये था लोक संगीत कार्यक्रम जिसमें आज आपने पांचीलाल कुशवाहा और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अब वक्त है सुगम संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन। शुरुआत कर रहे हैं पंडित सुधाकर शर्मा के लिखे इस भक्ति रचना से।

पतित पावनी जीवनदायिनी गंगा मैया पर आधारित भजन अभी आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में। लीजिए सुनिए पंडित सुधाकर शर्मा की एक और भक्ति रचना।

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अब सुनिए विजय अरुण की लिखी रचना, आवाज अनुप जलोटा की।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विट्ठल राजपुरा का एकल पखावज वादन। ताल है चौताल और वायलिन पर लहरा दिया है पंडित कमल कामले ने।

जयति जयति जय जय देव दमन नृत्य करत वृषभान सुता संग बाजत मृदंग कृत धगिन धकित धगिन धकित धगित्रक धकित धगिनता प्राण त्रिकृतिकता जयति जयति राधा जयति जयति राधा जयति जयति राधा जयति जयति जय जय देव दमन नृत्य करत वृषभान सुता संग बाजत मृदंग कृत धगिन धकित धगिन धकित धगित्रक धकित धगिनता प्राण त्रिकृतिकता जयति जयति राधा जयति जयति राधा जयति जयति राधा जयति जयति जय जय देव दमन नृत्य करत वृषभान सुता संग बाजत मृदंग धगिन धकिट धगिन धकिट धगित्रक धकिट धगिनता घ्रा त्रिकृतिकता जयति जयति राधा जयति जयति राधा जयति जयति राधा।

प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

नौ हक्का कमाली परन।

यमुना गे तट मंद मंद गति चली जात विषभान दुलारी लचकत थेरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र।

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृषभान दुलारी लचकत थिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्रमुखी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब भोपाल से रिले की जा रही है जिले की चिट्ठी।
1: अब आप सुनेंगे अशोक नगर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोक नगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रुपए के प्रति माह के मान से 1,48,200 रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नवविवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मीट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एनपीके और 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन।

मन भवन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आरती जादव का नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपके पसंद के गीतों के साथ और आज हम आपके खतों के जरिए जो हमें आपकी फरमाइशें मिली हैं उनके हिसाब से आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं पारस मणि फिल्म के गीत से, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। फारूक कैसर के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं ग्राम मुड़ेला पोस्ट लपरी जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से चंदा चांदनी आकाश कुमार और इनका परिवार, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर और आरती जोंधले, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा हदिया अस्मा सालिया शोएब मुश्ताबा राउफ शाहिद, गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर, लाभरियाभेरू इंदौर से अनिल बामनिया प्रमिला नंदिनी मुस्कान नीलम सावन कृष्ण कुमार ऋतिक कृणाल केतन, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी इशिका और तेजल यादव, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया कविता संजय नंदिनी विशाल विवेक सोनू मोनू डॉली देवराज महोबिया, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा सविता स्वाति और पूरा माखीजा परिवार, जुमरी तलैया से देव इंगोले छकुली पांगरकर आरडी इंगोले और छोटू इंगोले। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं पारस मणि फिल्म का एक गीत।

और लीजिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं गैम्बलर फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, नीरज के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं छत्रपति शाहू नगर हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले, सुनील जबड़े, देवास के उपाध्याय नगर से मुरारी लाल, मनीष शिवम वर्मा, शांतिपुरा से सुभाष गोडिया, लक्ष्मीपुरा से नवीन मीनू वर्मा, राजा रामनगर से राजेश अग्रवाल, शांति और कैलाश महाजन, सतारबाखल से नागपाल, मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो, सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा, हिमांशु अनुराग और सुलोचना सावले, बुरालाधरण मालेगांव से दत्ता, सुनीता बाई, सानिका और गजानन घायाल, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, शादाब खत्री और रमेश गौड़। आप सभी की पसंद पर पेश है गैम्बलर फिल्म का एक गीत।

0: तेरा आ।
1: जब प्यार किसी से होता है। श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो इसी फिल्म का है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं नांदखेड़ जिला वाशिम महाराष्ट्र से अशोक, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली चुंबले और प्रीति चांदनी। दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन, भावना। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय, रानी, महिमा, नीतू वैद। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक। कुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, फलक, पूजा नैनावा, सुषमा, सीमा, स्मिता, मीनू जोशी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ।

कार्यक्रम का अगला गीत है तीन देवियां फिल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है और अनुरोध करता है पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मोहम्मद रफी मंसूरी। जिला लातूर से उस्मान शेख, सारा बानो दस्तगीर, फैजन बी, शाकिर इस्लाम, बाबा करिश्मा, सिमर सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ला, गदर शेख, निलोफर। जिला नांदेड़ से चांदनी, सैयद, बाल राजे, अमन सैयद और माहिरा सैयद। जिला कोल्हापुर से अतुल गौतमी, अरुण काले, एडी कांबले, प्रशिक मेघना, तुषार, एकता, उत्कर्षा कांबले और अरुण यलगुड़कर। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार, रेखा, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कांबले। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारीवली और डब्लू डोम। मथुरा से वसीम, आसमा, अकरम उल्ला। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। बीरनगर महाराष्ट्र से प्रकाश पराग, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी की पसंद पर पेश है तीन देवियां फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 10:32 से 11:02 तक आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटनों की बीमारी से बचाव, खानपान, व्यायाम और सही आदतें। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रावत से पूछ सकते हैं। विविध भारती चैनल के अलावा आप हमारा ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए फोन नंबर नोट कर लें 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, एक बार फिर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, प्रकाश मेहरा के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन और नवदीप येले, शेरीवड ने रकोला से अरुणा दामोदर, अमरावती महाराष्ट्र से चंदू हातोले, भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा, ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, पोस्ट बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षी, संचित वायाल आरेगांव से, मोताला से प्रथमेश देशमुख, करड़ा से स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, ग्राम परसोन तहसील मालथौन जिला सागर से भागचंद साहू, अजय राज, प्रेमबाई, करिश्मा साहू, नेवासा खुपटी से बंडू पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरी, श्रावण और अनीता बिडवे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मेरा साया। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान, ललिता अन्नू, विशाल, उर्वशी, प्रियंका, प्रियांशी, लक्की, ऋतिक, शौर्य, मुक्कू, बसंतीबाई, किशनलाल, महेंद्र मालती, सुनीता और शारदा। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब मोइन पवार और हसनैन पवार। ग्राम दीवाल से शंकरलाल, वनीता, छोटू, पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश, दीपक, समर और वेदिका फूलमाली। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना, जियांश मटाई। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना और निवान शर्मा। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम, नंदकिशोर और दीपक कांसोटिया। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। आड़ा बाजार इंदौर से प्रतिभा पांजरे, नेहा बल्लू, जिया, मनीष शर्मा, भावना, राशि, आशीष जाधव और दिनेश पांजरे।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गीत। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अनुरोध करता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन। सनावत से दिलीप, योगेश, सुनीता, मुस्कान, मालाकार। कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली। हिंगोली महाराष्ट्र से शहाजी बोडखे, नंदा, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाड़े। पाठर कवड़ा से अनिल, ओषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। बल्लार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एक लवे लोंढे। खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू और जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण और कलावती सोनी। कंडला बंदर कच्छ से जगदीश, पूजा और जैनिश जोहरी। अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम। आप सभी की पसंद पर पेश है सफर फिल्म का एक गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है चिराग फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है कोली मोहल्ला छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और रुखसार ने। नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, अमन, बच्चू और चीना शेख, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। कोआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर ने। नूर महल महसोल से हुमेरा नाज, सुमेरा, अबीहा, अरहान, हमजा, मुजम्मिल ने। बेरडी से इस गीत को सुनना चाहा है राजेश और कंचन सोनी ने। गायत्री वैष्णवी, चंचल ढोमड़े ने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। गरीब निवास कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश गवांडकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता गवांडकर। नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि गवांडकर।

0: क्या।
1: और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए बरसात की एक रात फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। अनुरोध करता है द्वारकापुरी इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना, जयदीप, अर्पिता, हेमंत, हिमांशु, ओशीन, अद्विका, निशिता शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा। जलगांव से नामदेव, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी भूतेकर। औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, वैभव, गौरव लोखंडे। रिंधोरा देवी से मेघराज, युवराज कोलते। बदनापुर से रुद्र कोलकर। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा। पुणे से प्रियंका, आर्या, पंकज वाडोदे। जरूर वरूर से बाबा साहेब वाडोदे और मीनाक्षी चरपे। खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। चांदुर बिस्वा से नारायण, विठल राव, ललिता रानी, परी, संजना, गणेश, कार्तिक, ब्रोनो, उषा और सोरना खड़से।

इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाजत दीजिए। आरती को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय

0: है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए और आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। इस विषय पर चर्चा करते करते सुनेंगे सुमधुर गीत, लेकिन गीत होंगे आज हमारी पसंद के और बातें होंगी आपकी। तो कॉल कीजिए 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो
1: हेलो, हॉटलाइन। हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैं सुखलाल प्रजापत बोल रहा हूँ, निसारपुर से, धार जिला कुक्षी तहसील से। सुखलाल
0: कौन? शुक्ला जी, आगे पूरा नाम बताइए।
1: प्रजापत जी।
0: सुखलाल
1: हाँ,
0: जी, कहाँ से?
1: निसारपुर धार जिले से। हाँ,
0: धार से। तो सुखलाल जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और धार जिले में गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है?
1: गर्मी का मौसम ज्यादा है अभी। गर्मी तो बहुत ज्यादा, जिन्हें ईंटे बनाते हैं हम, तो
0: अच्छा,
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है। क्या 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है।
0: बिल्कुल। और है ना, आपको तो दिन भर का काम रहता है और भरी गर्मी में ही काम करना पड़ता है।
1: हाँ, भरी गर्मी में काम करना पड़ता है और सिर पे टोपी वगैरह बांध के पूरा
0: हाँ जी
1: कंप्लीट रहना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, काम करिए अपनी शिद्दत से, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप केली
1: जी
0: का
1: जी
0: पन्ना पीते रहिए, प्याज खाइए, जिससे आप लू की चपेट में ना आ पाए।
1: जी जी जी
0: हाँ सुखलाल जी, आज का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, बात आपकी, गीत हमारे, और आज का
1: हाँ
0: विषय हमने रखा है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए।
1: मुसीबत का सामना मैडम जी धैर्य से करना चाहिए। और क्या है कि मुसीबत तो आती जाती रहती है, समय निकलता जाता है। इसके लिए क्या है कि थोड़ा धैर्य रख के और थोड़ा सोच समझ के कोई कदम गलत ना उठाए।
0: बिल्कुल, जैसे कोई मुसीबत ना आए किसी पर भी, लेकिन यदि आपके यहाँ छोटी मोटी मुसीबत आती है तो आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं या शांति से उसका निराकरण करते हैं?
1: शांति से निराकरण करते हैं। कोरोना काल में आई थी मुसीबत तो
0: हाँ जी
1: जी, तो क्या है कि धीरे धीरे उससे अपन पार हो तो हो गए हैं। धीरे से शांति से थोड़ा चलोगे तो बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सुखलाल जी, कॉल करने के
1: हाँ
0: लिए धन्यवाद। और कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, 11 से 12।
1: ठीक है,
0: ठीक
1: ओके,
0: है जी,
1: धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी जी
0: नमस्ते।
1: मैडम नमस्ते।
0: कौन?
1: मैं अभी बात कर रहा हूँ एमपी धार से।
0: प्रदीप,
1: सुमित सुमित
0: सुमित। अभी भी हमारे जो पहले कॉलर हैं धार से ही उन्होंने कॉल किया था।
1: अच्छा।
0: हाँ चलिए, एक हफ्ते के बाद ही कॉल कर रहे हैं ना आप।
1: नहीं, मुझे सारे नियम मालूम है।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: हाँ
0: यू वेरी
1: इतना
0: मच।
1: करें। हाँ
0: हाँ
1: जी हाँ जी।
0: जी,
1: मेरी बात किससे हो रही है?
0: कविता रावत
1: कविता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है, आपसे पहली बार बात हो रही है शायद।
0: जी। हाँ, पहली बार बात हो रही है। सुमित जी, आज का जो विषय है ना, वो ये है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए,
1: अच्छा,
0: क्योंकि जीवन है
1: बिल्कुल।
0: तो मुसीबतें तो एक न एक आती ही रहती हैं, है ना। तो बताइए, आपका इसमें क्या मत है?
1: मेरा मत मैडम इसमें यह है कि जो हमसे बड़े होते हैं या जिनको हमसे ज्यादा समझ होती है, हमें उनके जो तजुर्बे होते हैं, उनके जिंदगी में, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा हुआ होता है और वो जो संघर्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब उनके आसपास होते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखने को मिलता है उसी के आधार पे अगर हम हमारी जिंदगी में अगर कभी इस तरह की कोई भी समस्या आती है और हमें अगर उससे जूझना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा होती है। मेरा अपना खुद का अगर मैं बोलूं तो मेरी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है और बहुत सारी समस्याएं आई मेरी जिंदगी में। उनका सामना मैंने इसी तरीके से किया कि देखा लोगों को कि कैसे वो अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाला उन्होंने। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: दूसरी बात यह है कि कई बार हमें हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो हम अपने उस दौर को कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि जब आपका नाजुक दौर चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उकसाती हैं, जिनसे अगर आप अपना धैर्य खो दें या आप अपने ऊपर संतुलन ना रखें तो निश्चित ही परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही, उनसे और ज्यादा परेशानियों में हम घिरने के चांस बनते हैं,
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, और
1: है
0: आपसे
1: ना
0: बातचीत करके आपके विचार जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बिल्कुल
1: जी।
0: सही आपने अपना मत रखा है इस विषय पर।
1: हाँ, क्योंकि जिंदगी है तो निश्चित ही ये सारी चीजों का आना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैंने एक चीज और देखी है कि जो हिम्मत रखते हैं ना, उनकी
0: हाँ,
1: जिंदगी में ये सारे दौर और ज्यादा तेजी से आते हैं। कहीं ना
0: तेजी
1: कहीं
0: से आते हैं और
1: कोरोना या
0: तेजी से
1: कोविड के
0: निकल
1: दौर
0: भी
1: में तो
0: जाते
1: आप
0: हैं।
1: जी
0: तेजी से आते हैं और तेजी से निकल भी जाते
1: नहीं,
0: हैं।
1: वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें उन्हें, उस आदमी को आजमाती हैं और उससे वो
0: हाँ
1: और अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि
0: बिल्कुल।
1: वो हमें, जैसे मुझे अब इस समय ऐसा लगता है कि अब कितनी भी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा भोपाल से लेके धार तक आने का जो सफर रहा
0: हाँ
1: और भोपाल में मैं जो रहा, तो जो मेरा दौर रहा, संघर्ष का दौर रहा, तो मुझे पता है कि मुसीबतों का सामना जो होता है वो एक समय रहते हैं, हम अगर सूझबूझ से कर लें तो निश्चित ही आप उसका कहीं ना कहीं फिर आगे जाके फायदा तो मिलता ही है।
0: बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बहुत अच्छी बातें करने के लिए। नमस्कार।
1: जी जी मैडम, नमस्ते आप।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हैं। आप कौन हैं?
0: मैं कविता रावत हूँ, आप कौन हैं?
1: मैं भावना यादव हूँ, काली चौक सिवनी से, मध्य
0: कहाँ से?
1: प्रदेश। काली चौक सिवनी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, सिवनी, मध्य प्रदेश से।
1: जी,
0: और भावना जी, क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ।
0: हाउसवाइफ हैं? लेकिन हाउसवाइफ को भी बहुत काम होते हैं।
1: जी,
0: अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा।
1: मैम बहुत काम होता है, सुबह से शाम तक, रात
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: के 12 बजे तक।
0: सही बात है,
1: जी
0: नॉन स्टॉप विदाउट
1: जी
0: पे। बिल्कुल। अच्छा भावना जी, आज के विषय पर हम आते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा है बात आपकी, गीत हमारे, और विषय है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, हम उसका सामना कैसे करते हैं।
1: मुसीबत आने पर तो मुसीबत अपने ही कोई मुसीबत झेलना पड़ता है। धैर्य
0: झेलना तो पड़ता है।
1: रखना, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य।
0: आप रखती हैं?
1: जी मैम, रखती हूँ।
0: तो शांति के साथ ही आप अपनी हर मुसीबत को टाल पाती हैं।
1: कभी कभी तो गुस्सा आता है, कभी गुस्से से कुछ नहीं होता है। शांति शांति काम करना चाहिए।
0: हाँ, इस बात को तो आप मानती होंगी कि है ना, हम अगर घबरा जाते हैं तो और हमारी मुसीबत, हमारी
1: बढ़
0: परेशानियाँ
1: जाती है,
0: बढ़
1: बढ़।
0: जाती
1: जी
0: हैं, है
1: जी
0: ना। तो जितना हम धैर्य रखेंगे, शांति से उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्दी उसके निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं।
1: जी मैम,
0: चलिए भावना जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और एक हफ्ते
1: मैम
0: बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ एक हफ्ते बाद ही कॉल किया होगा आपने।
1: मेरा 3 महीने बाद लगा था।
0: अरे चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले हफ्ते लगा सकती हैं।
1: जी जी
0: ठीक है,
1: जी
0: थैंक यू
1: थैंक
0: वेरी
1: यू
0: मच,
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: शुभ नाम आपका?
1: जी। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े बोल रहा हूँ।
0: मनीष निमाड़े। शायद आप
1: हाँ
0: लेटर
1: जी,
0: भी लिखते थे क्या कभी?
1: बहुत कभी नहीं, अभी भी
0: है
1: जारी है। और
0: ना?
1: कम से
0: वही, क्योंकि है
1: कम
0: ना, लेटर्स पढ़ने में आपका नाम पढ़ने में आया है कई बार, इसीलिए मुझे
1: जी।
0: एकदम से
1: नहीं,
0: क्लिक
1: चलिए,
0: हुआ।
1: धन्यवाद कि इस पत्रों की महत्ता के कारण हम कहीं तो याद हैं।
0: नहीं, बहुत बहुत वैल्यू है हमारे श्रोताओं की, ऐसी बात
1: नहीं,
0: नहीं है।
1: वैल्यू तो खैर, वो एक याद होना अलग बात है और
0: सही
1: श्रोता ना
0: बात
1: अपना
0: है।
1: वो होता। और आज भी ईश्वर की कृपा से मेरी टेबल पर करीबन 300 350 पोस्ट कार्ड आज भी रखे हैं।
0: अरे, तो वो आपने पोस्ट नहीं किए क्या?
1: नहीं, लिख के नहीं रखे मैडम, लिखते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं,
0: अच्छा, ऐसे ही ब्लैंक लाकर रखे हुए हैं आपने।
1: ब्लैंक लाके रखे हुए रहते हैं। और नित्य का काम है, जैसे खाना जरूरी है ऐसे दो चार पत्र लिखना जरूरी है।
0: भाई, लेकिन है ना, हमारे इन श्रोताओं की वजह से आज भी हमारी पुरानी परंपरा जिंदा है
1: जी,
0: ना। चलिए,
1: हाँ,
0: बहुत
1: फिर भी
0: बहुत
1: चल रहा
0: आभार।
1: है तो श्रोताओं के कारण है। और कुछ ऐसे हैं जो आज पोस्ट कार्ड जिंदा है, नहीं तो बेचारे
0: सही बात है।
1: सबके खत्म हो गए होते।
0: अच्छा मनीष जी, आज के विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करें
1: जी
0: कि मुसीबतों का सामना आप किस प्रकार करते हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए।
1: जी, मुसीबतें, देखिए मनुष्य जीवन है और मुसीबतें, कठिनाई परेशानियां आती रहेंगी। और इसके लिए, इनका सामना करने के लिए, अगर आप, हम किसी बड़े परिवार में रहे हैं या हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे साथ हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ये अगर साथ रहे तो हमको उन्होंने बचपन में ही ठोक ठोक के सिखा दिया है कि हम छोटी मोटी मुसीबतों का कैसे सामना करेंगे, कैसे पार पाएंगे। और जब मुसीबतें बड़ी आती हैं तब वो लोग भी साथ होते हैं। और हम लोग जो है, परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले तो हम ईश्वर और उसका धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने कष्ट दिया है तो इसको सहन करने की या पार पाने की हमको धैर्यता भी दी है। थोड़ा संयम से हम उसको काम लें और रास्ते सूझते जाते हैं और हम पार पाते जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये
1: जी
0: बातचीत आप कल के प्रोग्राम में 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन
1: जी
0: सकेंगे
1: जी
0: मनीष
1: वो
0: जी।
1: जी, वो
0: जी
1: क्या होता है, एक कहावत है कि
0: हाँ जी।
1: आफत के झाड़ पर मुसीबत के फल जब लग जाते हैं तो मनुष्य को तपती धूप नहीं देखना चाहिए, दूर पड़ रही छोटी सी छांव को देखकर भी मन में चिंतन करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, मन खुश कर दिया। धन्यवाद कॉल
1: जी
0: करने
1: जी
0: के
1: जी
0: लिए।
1: ओके जी, थैंक यू
0: जी।
1: जी।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते दीदी
0: नमस्ते जी।
1: जी
0: आवाज आपकी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है।
1: जी जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: जी मैडम जी, हम ग्राम पेपालिया वराई तहसील बेगमन जिला रायसेन से जगत सिंह चड़ार बोल रहा है दीदी।
0: जगत सिंह जी, आप तो बहुत कॉल करते हैं और आपके कॉल लग भी जाते हैं,
1: जी
0: है ना। अच्छा जगत सिंह जी, ये एक हफ्ते के बीच में तो नहीं लगा आपका कॉल?
1: नहीं जी, होगा 22-24 दिन होगा।
0: चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है ना, अगर आप इस बीच में लगा होगा ना कॉल, तो अपनी बातचीत अगर मैं कर भी लूंगी तो मुझे फिर वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक
1: हाँ
0: हफ्ते के
1: वो
0: बीच
1: क्या है
0: में।
1: कि सभी लोगों की देखने पड़ती है कब कौन सा
0: सही
1: लगा
0: बात
1: है।
0: है, वही हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सके, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसको रिकॉर्डिंग के रूप में बनाया
1: नहीं
0: जाए।
1: अच्छा किया, जो तो हमें कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया ये तो।
0: अच्छा जगत सिंह जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: देखो मुसीबत आ जाएगी तो वो तो अच्छे से निकालो, जैसे अच्छे से समय निकलता है ऐसे मुसीबत को भी काटो समय।
0: आपके साथ ऐसा होता है क्या, आप बिल्कुल आराम से सुकून से हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं या थोड़े से घबरा जाते हैं?
1: जी मैडम जी, हमें तो इस बार ने ऐसा ही बनाओ है कि मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि पैरों से भी नहीं चल पाती तो मुसीबत चलने में भी होती है,
0: ओहो हाँ, सही
1: और
0: बात है।
1: देख भी नहीं पाती तो देखने की भी समस्या मन में सोचते हैं यार, के ऐसा हम भी देखते।
0: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा धैर्यवान तो कोई होगा ही नहीं,
1: जी
0: है ना। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आप खुश हैं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं।
1: ये अपन जा सोचते, अब भगवान ने जैसा किया तो ठीक किया, अब उसको क्या, भगवान ही जाने जो कछु हुए। नहीं
0: चलिए कोई बात नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है जगत सिंह जी?
1: जी, हमारे परिवार में, परिवार बड़ा है, 5 भाई हम लोग
0: अच्छा।
1: और सभी लोग हैं।
0: चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दूसरे श्रोता भी जो आपकी बातें सुनेंगे ना, तो निश्चित रूप से उन्हें ये सबक मिलेगा कि छोटी मोटी मुसीबतों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जब लोग
1: जी
0: बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से झेल जाते हैं,
1: जी जी
0: है ना। चलिए
1: जी
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, कल आप
1: ये
0: अपना
1: बोल
0: प्रोग्राम
1: मैडम जी,
0: सुनिएगा।
1: ये बोल रहे हैं, एक दो नाम ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: रानू दीदी, रानू
0: हाँ
1: दीदी और विपिन भाई साहब, विपिन कटारे गौर झामर से,
0: अच्छा।
1: और रानू दीदी हैं देवास से।
0: बिल्कुल हम जानते हैं,
1: जी उनको अभी कॉल अभी बहुत दिन से नहीं सुना मैंने।
0: मैंने भी नहीं सुना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कॉल आए उनका।
1: जी
0: चलिए जगत सिंह जी, धन्यवाद,
1: जी नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी, नमस्कार बहन जी।
1: हाँ कौन साहब बोल रहे हैं?
0: जी, मैं सूरज कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजला, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात करता हूँ बहन जी।
1: सूरज कुमार सैनी?
0: नहीं, सुरेश कुमार सैनी
1: सुरेश कुमार?
0: जी,
1: अच्छा कहाँ से? महोबा से?
0: महोबा जिला से।
1: जी कैसे हैं सुरेश जी?
0: बस एकदम अच्छे हैं।
1: और क्या करते हैं आप काम?
0: जी, मैं काम तो करता हूँ बहन जी, खेती किसानी भी है अपने पास,
1: हाँ जी
0: और फूलों का डेकोरेशन का भी काम है। और इस वक्त जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय अभी सिलाई कर रहा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ।
1: अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड हैं आप
0: जी।
1: तो। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि इतना सारा काम आप करते हैं।
0: जी
1: सुरेश जी बताइए कि आज का विषय है हमारा कि मुसीबतों से हमें, मतलब मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
0: मुसीबतों से घबरा नहीं चाहिए कभी भी।
1: जैसे यदि आपके घर में बच्चे हैं, उनके कहीं कोई
0: जी
1: नंबर कम आते हैं या कुछ है ना प्रॉब्लम आ जाती है, परीक्षा दोबारा से देनी होती है, तो वो बच्चे घबराते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं?
0: घबराने वाली बात नहीं है, फिर से प्रयास कीजिए। हाँ
1: शांति से आप बच्चों को डील करते हैं या
0: जी
1: थोड़ा
0: जी
1: गुस्सा
0: बिल्कुल
1: हो
0: शांति
1: जाते
0: से
1: हैं?
0: डील करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको डांट झपट के मारा पीटा जाए, उसमें फिर और बच्चा बिगड़ता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे बाकी श्रोता भी आपके बारे में जानकर बड़े खुश होंगे और उन्हें एक नया आइडिया भी मिलेगा।
0: जी जी जी
1: चलिए धन्यवाद सुरेश
0: नमस्कार
1: कुमार जी,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। हमको गाना सुनना है।
0: हाँ गाना तो आपको सुनाएंगे हम, लेकिन अपनी पसंद का सुनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम है बात आपकी, गीत हमारे।
1: ऐसा है,
0: हाँ
1: बुधवार के दिन आते थे ना, फोन कर गीत सुने। अब
0: बुधवार को फोन
1: कल
0: करें
1: सुन
0: गीत
1: लिया।
0: सुने, आज 11 बजे से आएगा, लेकिन जो कल प्रोग्राम आने वाला है उसे हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसा मतलब
0: ऐसा
1: कल
0: है,
1: हुआ, कल आएगा जी गाना।
0: ये वाला गाना कल आएगा, लेकिन गाना आज हमारी पसंद का होगा। आप तो आज हमसे बात करिए, विषय है मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं।
1: मुसीबत का सामना मैम करना पड़ता है, अकेले रहते तो सभी काम करना पड़ता है ना।
0: अरे आप अपना नाम तो बताइए और कहाँ रहती हैं ये बताइए।
1: होशंगाबाद जिला से बोल रहे हैं।

0: हाँ?
1: कौन बोल रही हो?
0: कविता, कविता दीदी बोल रहे हैं।
1: कविता दीदी, आए बाबा कविता दीदी, बहुत दिन बाद भैया आपसे।
0: हाँ, बहुत दिन बाद बात हो रही है ना। और
1: जी
0: आपकी क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है। मैं कॉल लगाते ही हम तुम्हारा कॉल लगता नहीं है। ये
0: अच्छा,
1: आदमी की पेशन की लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लगता नहीं है।
0: चलो, लेकिन आप है ना छोटू जी, इतनी मुसीबतों के बावजूद रेडियो से भी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, रेडियो तो हमारी जान है, और
0: अरे वाह।
1: तुम्हारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा जो प्रोग्राम देते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो बहुत अच्छे लगते, और तुम्हारी बातों भी बहुत अच्छी लगती।
0: चलो, कुछ तो अच्छा लगता है आपको।
1: बातों
0: अच्छा, ये बताइए कि
1: जी
0: अब आप है ना जैसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उस परिस्थिति में आप घबराते हैं या शांत मन से चलता है आपका काम? धैर्य रखे रहते हैं या घबराते हैं?
1: कौन हम
0: हाँ,
1: घबराते क्यों
0: नहीं घबराते?
1: हम? नहीं, हम नहीं घबराते मैम।
0: अच्छा, चलिए, ये बहुत
1: आज
0: अच्छी बात
1: तुम्हारी
0: है।
1: ड्यूटी लगी है।
0: आज हमारी ड्यूटी है।
1: अच्छा, तो हमारा गाना बता दे, कल कल बता देना।
0: अच्छा, बता दीजिए। वैसे आज है ना हम जो गा से बात करेंगे, और गाने हम लोगों की पसंद के होते हैं, कल सुन लेना 11 बजे से। आज तो ये
1: कल
0: प्रोग्राम
1: 11
0: नहीं
1: बजे
0: है,
1: सुना दीजिए
0: ठीक है? चलिए,
1: मैम।
0: ओके ओके।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि टीईटी में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें ये परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता है राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल।

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश रेलवे कॉलोनी बठिंडा से आई है। श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। अगली चिट्ठी मलकापुर महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। गीत लिखा शकील बदायूं ने, संगीतकार हेमंत कुमार। इस गीत के लिए फरमाइश सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादा। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शिकार से। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है बीड शहर से, महाराष्ट्र। श्रोता हैं प्रकाश, पराग, प्रदीप और केशव। अगले श्रोता खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया गीत को कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अगले श्रोता झालावाड़ से हैं हर्षिता, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर और प्रभुलाल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ अष्टवसु, नवग्रह, चाणक्य आदि राजनीति वेत्ताओं को नमन। सभी गुणीजन एवं सुधीजन को मेरा प्रणाम। मैं सोच रही थी, मैं क्या बोलूं? वैसे मैं चाहूं तो बहुत कुछ सुना सकती हूं, परंतु रामायण या महाभारत की कथाओं का तो कई बार गायन कर चुकी हूं, इसलिए आज सोचती हूं कि क्यों ना पंचतंत्र से कुछ सुनाऊं। पंचतंत्र, हाहाहा, क्योंकि किंवदंतियां कहती हैं कि पंचतंत्र का नीति शास्त्र अद्भुत है। इस शास्त्र का जो निरंतर अध्ययन करता है, इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकते। अथ श्री पंचतंत्रम कथा। सुधीजन, दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोपे नाम का एक नगर था। वहां के राजा अमरशक्ति कल्प वृक्ष के समान उदार, प्रजा का संपूर्ण ध्यान रखने वाले एवं सभी कलाओं में निपुण थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति तथा अनंत शक्ति। परंतु तीनों ही पिता के विपरीत अत्यंत अज्ञानी, अविवेकी एवं वाचाल थे। महाराज अमरशक्ति को यह दुख खाए जा रहा था।
1: हे ईश्वर, मुझे आपने सारे सुख दिए हैं, मेरा राज्य चारों ओर से सुरक्षित है, मेरी प्रजा सुखपूर्वक है, परंतु प्रभु, मेरे पश्चात मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? सच है, रूपवान, धनवान एवं भाग्यवान होने पर भी मूर्ख पुत्र का जन्म लेना माता के गर्भ को अपमानित करता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये ठीक रहेगा, कल मैं सभासदों से इस विषय में चर्चा करूंगा।
2: महिला रोप नगर के महाराज राजा अमर

0: अपना आसन ग्रहण करें।
1: क्षमा चाहता हूं महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपकी सभा में 500 से अधिक विद्वान उपस्थित हैं, उसके पश्चात भी।
2: महामंत्री सुमति, मैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर अत्यंत व्याकुल हूँ।
1: मेरा निवेदन है महाराज कि पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान एवं अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं, राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में भेज देना चाहिए।
2: मैं आशा करता हूँ पंडित विष्णु शर्मा मेरे पुत्रों को अति शीघ्र ही शिक्षित बना देंगे, परंतु क्या वे मेरे पुत्रों का दायित्व लेंगे?
1: शुभ कार्य में देर किस बात की महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत उन्हें आपके समक्ष उपस्थित होने का निवेदन करूं।
2: जैसा आप उचित समझें।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा आपके सामने उपस्थित होने की इच्छा रखते हैं।
2: उन्हें ससम्मान सभा में ले आएं।
1: जो आज्ञा।
3: प्रणाम महाराज, मैं वेदों के अध्ययन में लीन था, तभी सूचना मिली कि महाराज मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं। आज्ञा करें महाराज, एक दरिद्र शिक्षक आपके राजकीय कार्य में।

0: आपकी क्या सेवा कर सकता है?
1: हे विद्वान, मुझ पर अनुग्रह करके यदि आप मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत कर सकें, तो मैं आपको 100 गांव का अधिकार दूंगा।
0: क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु 100 गांवों का आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूंगा। अधिक क्या कहूं, परंतु आपके पुत्रों को शिक्षित करने में मैं स्वयं भी आनंद की प्राप्ति करूंगा। मैं अर्थलोलुप नहीं हूं, इंद्रिय सुखों से भी विरक्त हो चुका हूं। आप आज की तिथि अंकित कर लें, मैं पंडित विष्णु शर्मा आज ये सिंह घोषणा करता हूं कि आज से 6 मास के अंदर यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना दिया, तो आप मुझे मृत्यु दंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं।
1: हे देव, आपको कदाचित ये अनुभव नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का क्षण भर में ही समाधान कर दिया। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि मेरे पुत्र बड़े ही
0: बस महाराज बस, आज से ये आपकी चिंता मेरी चिंता है। आज पूनम की रात है, आज से ठीक 6 मास बाद आपके तीनों विद्वान पुत्रों को साथ लेकर ही मैं आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा महाराज।
2: मंत्रियों सहित महाराज भी विष्णु शर्मा की उस कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर चकित हो गए तथा राजपुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा की सेवा में सौंप कर निश्चिंत हो गए। उधर विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र के 5 प्रकरण बनाए, जिनका नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक थे, जिन्हें छोटी छोटी कहानियों से तैयार किया गया था। कहते हैं इन 5 प्रकरणों ने 6 मास में ही राजपुत्रों को अद्वितीय विद्वान बना दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मित्र भेद से प्रारंभ किया। वर्धमानो महान स्नेह
0: सिंह गो वृषयोर वने पिशुनेना की लुप्तेन जंबुकेन विनाशिता। एक नगर में वर्धमान नामक एक वैश्य रहता था। वो बहुत ही धनी था। उसने अपने सदुपायों से प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली थी। अंततः उसने धन का कहीं निवेश करने का सोचा।
3: उफ, नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं, धन को कहां लगाऊं? मेरे पास जो धन है उसका कहीं सदुपयोग तो करना चाहिए ना, पर करूं क्या? सत्य है कि धनवान व्यक्ति की गणना उत्तम पुरुषों में होती है। धनिकों के शत्रु भी उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उनके प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। इस सोचा विचारी में नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं? विद्वान कह गए हैं धनोपार्जन के तो 6 तरीके हैं, सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। नौकरी? नौकरी से तो सेवा का उचित मूल्य नहीं मिलता और साथ ही ऊंचे पद वालों की टाट भी सहनी पड़ती है। तब खेती? ये तो अत्यंत ही कष्टदायक है। ना बाबा ना, खेती बिल्कुल ना। तब फिर क्या?
4: एक उपाय है भैया, ब्याज पर पैसे चलाना।
3: ब्याज से पैसे चलाना? ना बाबा ना, ब्याज से पैसे चलाने वालों को भी धन डूबने का भय रहता है। भिक्षा? भिक्षावृत्ति भी कपटी लोगों के कारण निंदनीय हो चुकी है।
4: तब व्यापार?
3: हाँ, व्यापार ही सबसे उत्तम है भैया,
4: यही ठीक रहेगा।
3: मैं कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर व्यापार के लिए चल पड़ूंगा। अब आएगी नहीं।

0: सारी तैयारियां हो गई रे।
1: आओ।
0: अरे मौसम भी अनुकूल है, हमें आज ही रवाना होना है।
2: अरे भाई वर्धमान,
0: भैया
2: कहाँ की तैयारी है?
0: ये साधुमल जी आइए आइए। भैया शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, जाने से पहले आप सबसे मिलना चाह रहा था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए।
2: अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो इसी बहाने आपके दोनों बैल संजीवक और नंदक भी शहर घुमाएंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया, बचपन से ही उन्हें हमने पाला है, उनके बिना जी भी तो नहीं लगता हमारा। अच्छा भैया चलते हैं। नमस्कार भैया।
2: नमस्कार।
0: चलो चलो साथ हुआ। संभल के ये सातवा। अरे देख तो कितनी धूप चढ़ाई रे। बैल भी थक गए होंगे और बाकी सारे साथियों को भी भूख लग रही होगी। क्या करें रे,
1: क्या करें फिर?
0: वो देख देख देख, अरे जमुना नदी आ गई। चले जमुना किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और तब तक संजीवक और नंदक भी चराएंगे और विश्राम कर लेंगे।
1: तो जे बात तो हम कह रहे हैं।
0: जी कह रहे का?
1: सेठ जी, जे आपने बहुत अच्छा किया। वो क्या कहते हैं, हम सभी थक गए थे ना, आराम की तो सोच रहे थे, तो हम कहते कि आप भी तनिक विश्राम कर लो सेठ जी।
0: यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अरे जाओ अरे जाओ, ए संजीवक नंदक जाओ चराओ जाके। ए सातवा चला पेड़ की छां तले आ जा।
1: चलो।
0: ए सातवा देख तो ये संजीवक आज कितनी मस्ती कर रहा है।
1: अरे बहुत मस्ती कर रहा है।
0: अरे अरे अरे, अरे ये तो जमुना नदी के किनारे जा रहा है। ए संजीवक, ए संजीवक जमुना किनारे ज्यादा मत जा रे, अरे आगे दलदल है।
1: ए संजीवक,
0: ए सुन रे निकालने की जुगत ही नहीं हो रही। अब क्या होगा?
1: यही बात तो हम कहते सेठ जी।
0: क्या कह रहे हैं?
1: अरे यही कि आप कब तक यहाँ रुकोगे? अरे अंधेरा होवे को आया है।
0: क्या
1: अंधेरा? कहते थे कि एक बैल के कारण आपके साथ ही कहीं शेर चीते के हाथ लग गए तो।
0: शेर चीते? अरे भैया, अरे पसारवा, अरे सातवा, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भैया? देख तो वो कितना अस्वस्थ दिख रहा है।
1: यही बात तो हम कह रहे सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
1: अरे आपको शायद ये ज्ञान नहीं है, ये जंगल में ना डाकुअन का भी बड़ा आतंक है।
0: क्या कह रहे डाकू?
1: अरे डाकू डाकू
0: भैया,
1: कहते कि ईश्वर ना करे अगर कुछ।
0: अरे चुप चुप। अरे भैया मेरा भी शेर चीते भी डाकू भी। तुम शायद ठीक कहते हो, परंतु संजीवक को?
1: अरे यही बात तो है। आप तो निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ रुकत है और संजीवक को निकाले का कोई जुगत करत है। और जाके उबरते ही हम जाको लेके शहर आ जाएंगे। बस
0: पक्को पक्को
1: पक्को, आप तो जाओ।
0: ठीक है भैया, हम निकल ले, यही ठीक रहेगा। चलो भैया चलो आगे बढ़ो। ए भैया संजीवक को लेके आ जाना।
1: अरे हम जरूर आ जाएंगे संजीवक को लेके।
0: भैया
1: आ जाओ,
0: जा रहे हैं साथ में।
1: जाओ
0: संजीवक को लेके आना भैया।

0: और फिर सेठ जी संजीवक को छोड़कर चल दिए। कहते हैं समझदार लोग छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज का नुकसान नहीं करते। उधर सार्थवाह भी एक पेड़ की डाली पर सो गया और रात बीतने लगी।
1: सवेरा हुए को आया, देखें तो संजीवक की का दशा है। अरे अरे, हमें तो लगता ही नहीं कि ये कभी निकल पाएगा। तो हम कितने दिन तक जाके लिए प्रतीक्षा करें? अरे ये तो ऐसे ही मर जाएगा, यही बात तो हम कह रहे हैं। है? हम कहे जाके लिए अपनी जान को विपदा में डाले। हाँ, हम तो जाको इधर छोड़ के चले चलते।
0: सार्थवार ने शहर जाकर वर्धमान को संजीवक की मृत्यु का झूठा समाचार दे दिया। दुखी मन से वर्धमान ने उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया। परंतु इधर की कहानी तो कुछ और ही थी। आयु शेष होने के कारण संजीवक बच निकला। यमुना जल से मिश्रित वायु एवं सुनहरी घास को खाकर वो काफी हृष्टपुष्ट हो गया। पूरे जंगल में हुंकारता फिरता था। एक बार उस जंगल में पिंगलक नामक शेर अपने साथियों सहित यमुना में अपनी प्यास बुझाने आया।

0: ये किसके हुंकार है भाई? मेरे तो सारे शरीर में कंपन होने लगा। नहीं नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, अवश्य ही विदेश से आया है। बाप रे बाप, अपने प्राण बचाओ। अरे करकट दमनक
1: जी महाराज,
0: शीघ्र ही सभी सामंत गणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे आ जाओ।
1: जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज आप चलें, हम सभी को लेकर आते हैं। भाई दमनक, सभी को ले चलो यहां से। हाँ क्यों दमनक, हम सियार हैं तो क्या? हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं? जब सिंह राजा ने हमें मंत्री पद से हटा ही दिया तो क्यों हम राजा की सहायता करें?
2: परंतु हमारे स्वामी पिंगलक आज भयभीत। मैं उनके भय का सही कारण जानकर उपाय सोचूंगा।
1: आपने कैसे जाना कि स्वामी भयभीत है?
2: इसमें जानने की क्या बात है, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही बातों को समझ लेते हैं।
1: अच्छा, आप कैसे महाराज को अपने वश में करेंगे?
2: अरे करकट देखो, राजा के प्रति एक सेवक का क्या कर्तव्य होता है
1: बताओ?
2: मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: सच कहते हैं, सागर और पर्वत की परिधियां ज्ञात हो सकती हैं, पर मनुष्य का मन ना बाबा ना। तो सुधीजन, अब दमनक तो पिंगलक के पास चला।
2: महाराज को दास का प्रणाम। एक निवेदन है महाराज, आप पानी पीने गए और बिना जल ग्रहण किए ही लौटकर इस प्रकार क्यों बैठ गए?
0: दमनक, दूर से आ रहे

0: धैर्य पूर्वक मेरी प्रतीक्षा करें, मैं जाकर आवास के वास्तविक कारण को समझ कर आता हूं। मेरे लौटने के बाद ही आप जैसा उचित समझें कीजिएगा।
1: यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
0: जैसी आज्ञा महाराज।
1: मैंने दमनक पर विश्वास करके क्या ठीक किया? कहीं मंत्री पद से हटाए जाने का बदला तो नहीं ले रहा? मेरे शत्रु को लाकर मुझे मारने की इच्छा तो नहीं रखता? नहीं नहीं, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर छुप जाता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा।
0: महाराज ने मुझ पर बहुत भरोसा किया। अब मैं करकट को बताऊंगा कि वास्तविक सेवा वृत्ति क्या होती है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे झाड़ियों के पीछे ये कौन है? ये तो एक बैल है। वाह वाह, भगवान की कृपा से ये बड़ा अच्छा हुआ। इस बैल की हमारे महाराज सिंह से मित्रता करवाकर पुनः शत्रुता करवाऊंगा। और संधि विग्रह की इस नीति से पिंगलक को अपने वश में कर लूंगा। अरे दुष्ट बैल, इधर आओ। अरे महाराज पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं, इस वन प्रांत में व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हो?
2: भद्र, ये पिंगलक कौन है?
0: अरे तुम महाराज पिंगलक को नहीं जानते? वे इस वन के स्वामी सिंह हैं, तुम्हें अभी बुला रहे हैं।
2: हे भद्र, आप बड़े ही उदार एवं सज्जन लग रहे हैं। यदि आप मुझे वहां ले चलना ही चाहते हैं तो महाराज से मुझे अभयदान दिलवाने की कृपा कीजिएगा।
0: हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं जाकर देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप तब तक यहीं बैठे रहिए।

0: महाराज की जय हो।
1: क्या सूचना लाए हो दमनक?
0: महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस आवाज का पीछा किया। वो कोई सामान्य जीव नहीं है, भगवान शंकर का वाहन महावृषभ नंदी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर ने उसे संपूर्ण वन में स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दी है।
1: तभी मैं सोचूं, एक तृणभोजी पशु इस भयंकर वन में निडर होकर कैसे घूम रहा है। वैसे दमनक, तुमने उससे क्या कहा?
0: हे स्वामी, मैंने भी उससे कह दिया कि ये वन चंडिका के वाहन सिंहराज पिंगलक का है, अतः आप हमारे अतिथि हैं। मैं स्वामी पिंगलक की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। कृपया चलकर जलपान ग्रहण करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आनंद पूर्वक विहार करें।
1: वाह मंत्री श्रेष्ठ दमनक, ऐसा लगता है आपने मेरे मन की बात कह दी। जाएं और शीघ्र ही उन्हें आदर पूर्वक ले आए।
0: जी महाराज, जाता हूं।
2: हाँ आओ दमनक भाई, क्या कहा महाराज ने? क्या उन्होंने मुझे अभय दान दिया?
0: अभय दान की क्या बात करते हो? मैं महाराज से कुछ कहूं और वो टाल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप निर्भय होकर उनके पास चले, वहां मित्रता पूर्वक रहेंगे। परंतु मित्रता के मद में मुझे भूल मत जाएं, नहीं तो आपकी दशा दंतिल सेठ के समान हो जाएगी।
2: अम्मा, ये दंतिल सेठ कौन है भाई?
3: उस दुष्ट दमनक ने कैसे अपना खेल शुरू कर दिया, पिंगलक के सामने भी अपने को श्रेष्ठ साबित कर लिया।

और संजीवक को भी मुट्ठी में कर लिया। उसने संजीवक को दंतिल की कथा सुनाई। परंतु हम ये कथा सुनेंगे पंचतंत्र की अगली कड़ी में, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की पहली कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है। इसमें ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य, साथ ही भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा TET को लेकर फैसले में कहा है कि जो भी छूट दी जानी थी वे पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें TET परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को TET परीक्षा देना होगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत एस भोंडवे ने कहा है कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

सिक्योर रिश्तों की खूबसूरत डोर और प्यार से सजे बंधन को बांधने के लिए आज आपके साथ हैं आपकी अपनी रेडियो सखी आराधना। तो सखियों, कार्यक्रम में सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से। जी हाँ, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जी हाँ सखियों, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। वाकई सखियों, हर रिश्ता हमें मुकद्दर से ही तो मिलता है और मुकद्दर से मिले हुए रिश्तों को सजाने और संवारने के लिए हमें हमेशा हर संभव कोशिश करनी चाहिए, है ना सखियों? क्योंकि सखियों, रिश्ते होते ही हैं इतने खूबसूरत और प्यारे कि हर प्यारा रिश्ता हमारे सुख में, हमारे दुख में, यानी हर पल हमारा साथ निभाते हैं। वैसे भी सखियों, कहते हैं ना कि सुख की खुशी बांटनी हो या गम के पहाड़ लांघने हो, हमें हर समय अपनों की ही दरकार होती है। इसलिए सखियों, कहने का मतलब है कि हम अपनों के बिना हर पल अधूरे हैं, क्योंकि ये भी रिश्तों में आप अपनापन दिखाकर उनके दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन पता है सखियों, ये प्यार, ये अपनापन परिवार के बीच सजाने और संवारने के लिए सबसे है। तो सखियों, कीजिए परिवार में संवाद और निभाइए हर रिश्ते को जरा प्यार से, कुछ इस गीत की तरह।

सखियो, ये प्यारा सा गीत था क्या कहना फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ में। सखियो, ये जो प्यारे प्यारे गीत आप खूबसूरत गीत सुनते

0: हैं, हर घंटे पर समाचार सुनते हैं, विभिन्न तरह के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और नित नई नई जानकारियां सुनते हैं, यानी बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, किसानों के साथ ही रसोई से लेकर सीमा पर तैनात जवानों तक, यानी कहने का मतलब है सिखियो, सूचना, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा, कृषि और मनोरंजन। सिखियो, ये सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से, आकाशवाणी जो कि 8 जून 1936 को अपनी स्थापना के साथ ही 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है सखियों। यानी इस समय सखियों आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर जो है वो पूरा कर रही है आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ। तो फिर सखियों सुनते रहिए भारत की आवाज आकाशवाणी। और सखियों इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब बात करते हैं सरकारी योजना की। सिखियो, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलने वाली एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार देना, साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। सिखियो, इस योजना के अंतर्गत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वालों को 2 किश्तों में अधिकतम राशि 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं इस योजना में नए कर्मचारी रखने पर 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सखियो, इस योजना के लिए पात्रता की यदि बात करें तो ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी या 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के बीच में नौकरी शुरू करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे, साथ ही उन्हें कंपनी में कम से कम 6 माह की निरंतर नौकरी करना भी अनिवार्य होगा। सखियों, यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के माध्यम से लागू की जा रही है। तो सखियों, यदि कोई योग्य कर्मचारी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नियोक्ता के माध्यम से या फिर सीधे उमंग ऐप के जरिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सखियों, ये तो थी जानकारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। और अब सखियों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत। इसमें डॉक्टर ऋतु पौराणिक से बातचीत कर रही हैं शिखा। विषय है महिलाओं में दर्द की समस्या, कारण और उपचार। तो आइए सुनते हैं सखियों ये बातचीत।
1: आज हमसे कार्यक्रम में जुड़ रही हैं डॉक्टर ऋतु पौराणिक जी। आपको बता दूं सखियों कि डॉक्टर ऋतु एक पेन स्पेशलिस्ट हैं और महिलाओं में होने वाले अलग अलग किस्म के दर्द जो उन्हें होते हैं और जिन्हें वो अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं, उनके विषय में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा सखियो। अगर किसी भी किस्म का दर्द आपके शरीर में कहीं भी होता है तो आज की ये बातचीत जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो महिलाएं कई दर्द प्रकार के दर्दों से गुजरती हैं और उनको कई बार नजरअंदाज कर देती हैं, उनको दबा देती हैं। और ये पाया गया है शोध द्वारा कि महिलाओं में दर्द की संवेदनशीलता भी पुरुषों से कहीं अधिक होती है। उसके प्रमुख कारण हो सकते हैं उनके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका होना, और इसके अलावा सामाजिक तत्व भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महिलाओं में दर्द के प्रमुख कारण क्या हैं। उनमें से सबसे पहले मैं कहूंगी कि कमर का दर्द मुझे लगता है कि महिलाओं में काफी आम समस्या है। और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, गर्दन का दर्द है, और मांसपेशियों का दर्द जिसे हम फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं वह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या है। और इसके साथ साथ प्लांटर फेशियाइटिस या हील का दर्द या एड़ी का दर्द भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है। तो आज हम जानेंगे कि इनके हम किस तरह से आधुनिक उपचार कर सकते हैं, मतलब पेन किलर्स ना लेते हुए अन्य दवाओं और आधुनिक उपचार जिन्हें हम मिप्सी या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं वो हम इसमें करते हैं।
1: जी, आजकल जब हम महिलाओं की बात करते हैं ना तो वो अक्सर गर्दन में हमारे जो सिर के पीछे निचला हिस्सा है उसमें काफी दर्द की समस्या वो बताती हैं। तो इस दर्द की वजह क्या होती है और इससे वो किस तरह से बच सकती हैं?
2: हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली हो गई है उसमें मोबाइल का, लैपटॉप, आईपैड का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है। तो गर्दन समानता काफी समय तक झुकी हुई रहती है जिसके वजह से गर्दन की मांसपेशियों पे बहुत जोर आता है। तो एक तो मांसपेशियों से होने वाला दर्द जो है गर्दन से उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है गर्दन में स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ गई है क्योंकि मांसपेशियों पे लोड आ रहा है, तो स्लिप डिस्क बहुत कॉमन हो गया है। और डिस्क के खिसकने की वजह से जो गर्दन की नसें हैं जो हमारे हाथों को सप्लाई करती है, उनमें सूजन आती है और झंझनाहट और खिंचाव होता है। इसके अलावा जो हड्डियां हैं, मतलब जो वर्टिब्रा है हमारे गर्दन की, और उनके जोड़ हैं फेसेट जॉइंट्स, उन पर भी लोड आता है और वहां से भी दर्द उत्पन्न होता है।
1: जी, ये तो हुई सर्वाइकल जो पेन है, और इससे मुझे लगता है कि आजकल सभी महिलाएं दो चार हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारी रोज की दिनचर्या में जिसके लिए हमें गर्दन नहीं झुकानी पड़ती या फिर हमें सिर झुकाकर काम नहीं करना। हमें मटर छीलने हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, आपने ये सही कहा कि मोबाइल, लैपटॉप और जो है ये इस सबका एक प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कमर दर्द की। मैम, कमर दर्द से मुझे लगता है कि हर महिला जो है वो दो चार होती है, और इसकी वजह से ना उनकी जो रोजमर्रा की लाइफ है ना, उन्हें लगता है कि वो इस दर्द को बहुत आसानी से सह लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को धीरे धीरे तकलीफ पहुंचाती हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे वो किस तरह से बच सकती हैं?
2: बिल्कुल, तो कमर दर्द बहुत बड़ी और बहुत आम समस्या है। कमर का दर्द हमारे स्पाइन के कई जो पार्ट्स हैं उनसे आ सकता है, जैसे कि वर्टिब्रा हो गए, जो हड्डियां होती हैं कमर की, उनसे, उनके बीच में डिस्क जो होती है उसके खिसक जाने से, और जो वहां से जो नसें निकल रही हैं स्पाइन, उन नसों से उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों से, जो मांसपेशियां कमर की हैं आसपास जिनमें तनाव हो रहा है या कमजोर है, वहां से भी दर्द हो सकता है। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। पहले तो महिलाओं में हर महीने जो मासिक समस्या या पीरियड्स की का पेन होता है, ये हो सकता है, जो कि आम पेन किलर्स से ठीक भी हो जाता है, वो सिर्फ हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से होता है। इसके बाद जो कॉमन समस्या है मसल स्ट्रेन की या मांसपेशियों में तनाव की, तो वह पुअर पोस्चर या गलत उठने बैठने के ढंग के वजह से हो सकता है। और इसके अलावा हम अगर रेगुलर व्यायाम नहीं कर रहे तो हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं वह कमजोर हो जाती हैं। दूसरा कारण है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क भी एक बहुत आम समस्या है, झटके से उठ जाना, कोई भारी वजन उठा लेना, जिसके वजह से स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है, और यह डिस्क नसों के ऊपर दबाव डालती है जिससे नसों में सूजन आती है। और स्लिप डिस्क का दर्द अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे? या तो पेशेंट को कमर में दर्द होगा और यह दर्द उसके पैरों में जाएगा, और इतना दर्द तेज होगा कि साथ में मरीज को लगेगा कि करंट आ रहा है, नसों का खिंचाव महसूस हो रहा है, पैर में झंझनाहट हो सकती है, सुन्नपन आ सकता है, और कभी कभी पैर में कमजोरी या लचक भी आ सकती है। तो यह लक्षण है जिनसे हम स्लिप डिस्क को पहचान सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी एक बहुत आम समस्या है, जो कि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और देखा गया है कि जब स्तनपान या प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं उच्च मात्रा में कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं लेती या खान पान अच्छे से नहीं ध्यान रख पाती, तो उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसके वजह से भी दर्द बना रहता है। अब हम जानते हैं कि अगर स्लिप डिस्क है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी स्लिप डिस्क का दर्द 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है तो आप परामर्श लें, और उसमें हम दवाएं जो देते हैं वो नसों पे एक्ट करने वाली दवाइयां होती है। 50% केसेस में तो 2 हफ्तों में ये दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी मरीजों में हमें कुछ और इंटरवेंशन या उपचार की जरूरत पड़ती है। तो इसे हम MIPSI कहते हैं, जो कि मिनिमली इन्वेजिव उपचार है। इसमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के एक्सरे मशीन में देखते हुए एक सुई की मदद से हम नस के पास तक पहुंचते हैं और वहां पर दवाई डालते हैं जिससे नसों की सूजन उतर जाती है, और यह प्रक्रिया 1/2 घंटे की रहती है, जिसके 2 घंटे उपरांत मरीज घर जा सकता है पैदल चलकर। तो यह लंबे समय तक दर्द से आराम देता है, और इसके बाद रिहैबिलिटेशन मतलब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से हम उसको लंबे समय तक आराम दे सकते हैं। फाइब्रोमायल्जिया एक मांसपेशियों की ऐसी बीमारी है जो कि मिडिल एज जैसे 30 से 40 साल की महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाओं को पूरे शरीर में दर्द होता है अलग अलग जगह पर, और उसके साथ साथ मरीज को काफी ज्यादा तनाव रहता है या अकड़न रहती है शरीर में, और नींद की समस्या हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें जनरली गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे, कोनियों के पीछे, कमर के पीछे और घुटनों में दर्द होता है, इसके साथ साथ सरदर्द भी हो सकता है। मरीज बताता है कि वह जब सो के उठता है तो कभी भी ताजगी महसूस नहीं होती, नहीं। हमेशा थकान बनी रहती है, काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते, यहाँ तक कि याददाश्त भी कम हो जाती है और इसके वजह से मरीज को डिप्रेशन बना रहता है और यह तनाव और डिप्रेशन दर्द को और बढ़ाते हैं। तो ये एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता है कि मरीज को दर्द, डिप्रेशन और फिर उससे और दर्द। तो ये काफी आम समस्या है जिसको इग्नोर करती है महिलाएं, उसको नजरअंदाज करती हैं और इसका आसानी से दवाइयों द्वारा उपचार भी पॉसिबल है।
1: अब मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगी कि अक्सर महिलाएं सरदर्द और जब सुबह सोकर उठते हैं ना तो एड़ियों के दर्द की भी बहुत परेशानी बताती हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उससे वो किस तरह से बच सकती हैं? छोटी छोटी कोई यदि टिप्स हो तो वो दे दीजिए।
2: जी बिल्कुल। तो सरदर्द की अगर हम बात करें तो सरदर्द भी बहुत कॉमन है महिलाओं में, पुरुषों से ज्यादा कॉमन है, जिसमें माइग्रेन एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो माइग्रेन से बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी नींद का ख्याल रखें, समय पर सोएं और कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद पूरी लें। इसके अलावा खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके घर का पौष्टिक खाना खाएं और समय पर खाएं, समय का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसके अलावा जो जिन चीज़ों से आपको दर्द हो, हेडेक होता है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि नींद पूरी ना होना, खाना समय पर नहीं लेना या तेज शोर या किसी और चीज से आपको दर्द हो रहा है, उसको पहचाने और उसको अवॉइड करें। एड़ी के दर्द पे, जो एड़ी का दर्द है इसे हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, ये बहुत आम समस्या है और यह एक ऊतक होता है एड़ी के अंदर जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसके सूजन आने के वजह से ये प्लांटर फेशियाइटिस का दर्द एड़ी में और तलवों में होता है। तो महिलाएं अक्सर आती हैं, वो बताती हैं कि वह जब सुबह सोकर उठती हैं तो पैर जमीन पर नहीं रख पाती और उसका अगर थोड़ी देर बैठ गए उसके बाद अगर चलना शुरू किया तो भी उनको काफ़ी दर्द महसूस होता है और एक चुभन सी होती है। और इसके अलावा जब जैसे जैसे दिन ढलता है तो यह दर्द बहुत बढ़ जाता है और एड़ी के मध्य हिस्से में अगर वो दबाएं तो उसमें भी दर्द होता है। और ये देखा गया है जिनका जीवन शैली ऐसी है जिसमें उन्हें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ रहा है या नंगे पांव टाइल के फर्श पे हार्ड सरफेस पे चलना पड़ रहा है या ऊंची हील्स या वजन ज्यादा है, उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी हमारे पास सिंपल इंजेक्शंस हैं, क्योंकि पेन किलर्स लंबे समय तक लेना बिल्कुल सही नहीं है, इससे बहुत नुकसान होते हैं, किडनीज के फेल होने का रिस्क है, पेट में जलन अल्सर होने का रिस्क है, तो हमेशा पेन किलर्स को अवॉइड करें। तो इसमें सिंपल इंजेक्शंस हैं जैसे स्टीरॉयड के इंजेक्शन या फिर PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की तकनीक है जिससे ये इससे अच्छा आराम मिल जाता है।
1: जी तो सखियो, हम बात कर रहे थे डॉक्टर ऋतु पौराणिक जी से और मुझे इनकी बातचीत से ये तो समझ में आया है कि घरेलू उपचार जो है वो हर दर्द में हर वक्त कारगर नहीं होते हैं, हमें कभी कभी चिकित्सकीय सलाह भी ले लेनी चाहिए। तो सखियो, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए क्योंकि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की धुरी होती है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और निश्चित ही हमारी इस बातचीत से हमारी जो सखियां हैं वो लाभान्वित होंगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सखियों। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं में दर्द की समस्या, कारण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर ऋतु पौराणिक से शिखा की बातचीत। उम्मीद है सखियों आपने भी अपनी समस्याओं पर ध्यान दिया होगा इस बातचीत के जरिए। और सखियों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सखियों, ऐसा जरूरी नहीं कि बाजार में बिकने वाले महंगे फेस वॉश, सीरम या फिर क्रीम ही आपकी त्वचा को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि इन सभी में तो बहुत सारे केमिकल सखियों मिले होते हैं जो धीरे धीरे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, इसकी जगह सखियों आप रसोई में छिपी जादुई सामग्री से भी स्किन केयर किट बना सकती हैं और अपनी खूबसूरती को अंदर से निखार सकती हैं। वो कैसे? तो फिर सखियों नोट कीजिए कुछ आसान से टिप्स। सीओ, फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन, चावल, गुड़हल, मुल्तानी मिट्टी और ओट्स। इन सभी को मिलाकर एक सूखा पेस्ट तैयार कर लीजिए और जब आप इसे इस्तेमाल करें उस समय इसमें पानी या फिर गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। पता है सखियों, ये पेस्ट आपकी त्वचा को गहराई से तो साफ करता ही है, साथ ही रंग भी निखारता है। इसी तरह से क्यों प्राकृतिक सीरम के बनाने के लिए एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और विटामिन ई मिलाकर सीरम बना लें। इन सभी सामग्रियों को सखियों बराबर मात्रा में मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर लें। अब इसे रात को सोने से पहले चेहरे और गर्दन पर इस्तेमाल करें। सखियों, ये सीरम न सिर्फ चेहरे को नमी प्रदान करता है बल्कि चमकदार भी बनाता है आपकी त्वचा को। तो सखियों, किसी भी तरह के केमिकल को आज से कहें अलविदा, टाटा बाय बाय। और हाँ, घर पर ही तैयार कीजिए फेस वॉश और सीरम। और हाँ सखियों, लगाइए अपनी खूबसूरती में चार चांद कुछ इस गीत की।

सखियो, शान की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत था फना फिल्म से। और अब सखियो बढ़ते हैं फैमिली फिटनेस की ओर। सखियो, मौसम है गर्मी का और गर्मी के मौसम में शीतलता, स्निग्धता और तरावट लाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। वैसे आजकल बाजार में सखियो मौसमी फलों की बहार है, जैसे तरबूज, खरबूज, बेल, नींबू, आम, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार, केला, नारियल, पानी, लीची और भी कई तरह के फल। यानी कहना चाहिए सखियों कि इस समय बाजार में रसीले फलों की बहार है, जिनका सेवन मौसम के हिसाब से हम सभी को करना बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि सखियों, गर्मी के मौसम में इन सभी के नियमित सेवन से हमारे शरीर को जो है वो स्वाभाविक बल मिलता है, जो कि आपके स्वस्थ रहने के साथ साथ गर्मी से लड़ने की शक्ति भी देता है। तो सखियों, कीजिए इस समय मौसमी फलों का अधिक से अधिक सेवन और रहिए परिवार के साथ स्वस्थ व तंदुरुस्त, क्योंकि आपको रहना है दूसरों से एक कदम आगे। तो सखियों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो सखियों, फिर मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी आराधना को। नमस्कार।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शुरुआत करते हैं लोक भजन से।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक एक गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म शिकार से। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म ये इश्क नहीं आसान, इस फिल्म से आवाज अनवर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देवास जिले के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभागायुक्त और कलेक्टर मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये 1 दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और ITI को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, ICAR और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रवि विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए 78 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है।

0: समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का एक गाना। आवाजें हैं लता आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजपूत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत अरेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत और इसकी फरमाइश हम गाने के बाद बताएंगे। सुनते हैं पहले।

ये गाना लिया था हमने फिल्म राजपूत से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल डोमड़े और अर्जुन गणेकर। और इन्होंने ये ख़त लिखा है, कहाँ से लिखा है इसमें मैं तलाश कर रहा हूँ, इन्होंने जगह का नाम नहीं दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली बार आप जब भी पत्र लिखें तो उसमें जगह का नाम ज़रूर लिखें जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। अगला गाने के, इसी गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है, ग्राम फ्रांसी से लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गाने को फिल्म खुदा कसम से लिया गया है। साथ में दूसरी आवाज़ है आशा भोसले की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। लिखने वाले हैं बत्ता परिवार के लोग, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद खान। गांधी बाग अकोला से रतन कटनकर और वैशाली कटनकर। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक, जितेग ब्रक और मीका ब्रक ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देवास जिले के टोंककला गांव की पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है और दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री शंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ की यह योजना अदरक की खेती और वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26

उसकी तरह 5:02 पर होगा फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 5:33 पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:00 फिल्म संगीत 6:30 पर और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर। रात 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत और 9:30 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित विधुर मलिक का ध्रुपद गायन, राग होगा राग केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आज के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। थोड़ी देर में हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से इसी मीटर बैंड पर आप मीडियम वेव पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच की ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अपर्णा। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपका कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है युववाणी। और आज हम बहुत सारी विषयों पर बात करेंगे, हम देश विदेश की चर्चाएं करेंगे, साथ ही भारत के इतिहास से जुड़ी भी कुछ बातें करेंगे। और आज है गुरुवार, तो आज का स्पेशल सेगमेंट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है शीर्षक गीत। तो आज का शीर्षक क्या है और हम आज किस शब्द पर आधारित गीत सुनेंगे, ये मैं आपको कार्यक्रम में आगे ज़रूर बताऊंगी। तब तक आज के दो प्रश्न, तो आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है कि छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था। मैं मेरा प्रश्न पुनः दोहराती हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था। और आज का दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। मैं पुनः दोहराती हूँ, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने उत्तर ढूंढ लीजिए, उन्हें नोट करके रखिएगा और कार्यक्रम के अंत में जब मैं सही उत्तर बताऊंगी तो उससे मिलाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: करने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है। श्रोताओं, भारत आज वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की इसी कड़ी में भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करते हुए वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में 14 और 15 मई 2026 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। साथियों, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए सदस्य देश भी शामिल हो गए हैं। इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाने वाली है। इस बार पश्चिम एशियाई में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट भी बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल है। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, बैठक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करना और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने इस अवसर पर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर आधारित दृष्टिकोण को आगे रखा है। श्रोताओं, ये बैठक कूटनीतिक चर्चा तो है ही, साथ ही बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सहयोग और संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के उस वीर योद्धा की जिनका नाम साहस, स्वाभिमान और अदम्य पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1957 को पुरंदर किले में हुआ था। वे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत ही छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के स्नेह और संस्कारों में हुआ। जिजाऊ ने संभाजी महाराज को धर्म, नीति, शौर्य और स्वाभिमान की शिक्षा दी। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल दिखाई देने लगा था। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों, जब राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बालक संभाजी को मुगल दरबार में रहना पड़ा। पुरंदर की संधि के बाद वे कुछ समय तक औरंगजेब के दरबार से जुड़े वातावरण में रहे। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने राजनीति और साम्राज्य की चालों को बेहद करीब से देखा। दोस्तों, संभाजी महाराज केवल महान योद्धा नहीं थे, बल्कि विद्वान और साहित्य प्रेमी भी थे। इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने लगभग 8 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। उनमें प्रमुख रूप से संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, अरबी और पुर्तगाली जैसी भाषाएं शामिल थी। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषण की रचना की थी। माना जाता है कि उन्होंने ये रचना लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच ही लिखी थी और उनकी ये असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। बुद्धभूषण के साथ उन्होंने कुछ रचनाएं और की थी, जैसे नायिका भेद, नखशिक और सात शतक। दोस्तों, 1681 में मात्र 23 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। उस समय औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार चाहता था, लेकिन संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया। उन्होंने पुर्तगालियों, सिद्धी और मुगलों के विरुद्ध भी कई अभियान चलाए। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटे। संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई भी साहसी और दूरदर्शी थी। उन्होंने कठिन समय में मराठा साम्राज्य को संभालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही महाराज के निकट सहयोगी और मित्र कवि कलश भी विद्वान कवि और साहसी सलाहकार थे। उन्होंने अंत तक उनका साथ निभाया। दोस्तों, 1679 में 90 में मुगलों ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उन पर अपने सामने हार मान लेने का दबाव डाला, लेकिन महाराज ने अपना स्वाभिमान और धर्म से समझौता कभी नहीं किया। उन्होंने वीरता और अटूट साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, कहा ऐसा जाता है कि उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये कथन अधिकतर लोक मान्यता और वीर गाथाओं में प्रसिद्ध है। उनकी गिरफ्तारी भी किसी युद्ध भूमि में हार के कारण नहीं, बल्कि विश्वासघात और अचानक घेराबंदी के कारण हुई थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान पर अडिग रहे। आज संभाजी महाराज की जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। युवा पीढ़ी उनके जीवन से राष्ट्रभक्ति, साहस और नेतृत्व की प्रेरणा ले। इसी के साथ संभाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन।

0: शत्रु जड़ से ही मिटे हमने जब जब शमशीरे तानी है माया भवानी।
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी कि आज है दिन गुरुवार का, यानी कि आज का स्पेशल सेगमेंट है शीर्षक संगीत। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है कंगन। श्रोताओं, कंगन शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने गोलाकार, रंग बिरंगी, कभी चमकीली तो कभी सादी, कभी घुंघरू लगा हुआ तो कभी अलग अलग नगों से जड़ा हुआ एक श्रृंगार रूपी आभूषण सामने आता है और कानों में खनक सुनाई देती है और मन चहकने लगता है। भारतीय संस्कृति में कंगन केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि स्त्री सौंदर्य, परंपरा और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। हाथों में सजे कंगन वर्षों से भारतीय श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। कांच, सोना, चांदी, लाख या धातु से बने कंगन केवल सजावट के लिए नहीं पहने जाते, बल्कि इन्हें शुभता और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, देश के हर क्षेत्र में कंगनों की अपनी अलग शैली, रंग और महत्व है। जैसे राजस्थान में लाख के रंग बिरंगे कंगन प्रसिद्ध है, तो पंजाब में दुल्हन का लाल सफेद चूड़ा विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बंगाल में शंखा पोला शुभता का प्रतीक है, जबकि दक्षिण भारत में सोने के कड़े पारंपरिक पहचान माने जाते हैं। अब इतिहास की बात करें तो कंगनों का अस्तित्व हजारों वर्षों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिट्टी, पत्थर और धातु से बने कंगन मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भी लोग सौंदर्य और आभूषणों को महत्व देते थे। पुराने समय में राजघरानों के कंगन उनकी समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक होते थे। वहीं ग्रामीण समाज में साधारण कंगन कांच के भी होते थे, लेकिन खुशहाली और स्त्री सम्मान से जुड़े रहे हैं। कई लोक मान्यताओं में भी यह माना जाता है कि कंगनों की आवाज घर में सकारात्मकता और रौनक लाती है और कई बार स्त्री ऊर्जा और जीवन की लय का प्रतीक मानी जाती है।

दोस्तों, अब अगर कंगन को भारतीय सिनेमा, संगीत और हमारे साहित्य से जोड़े तो ये भी बहुत दिलचस्प होगा। हिंदी सिनेमा और संगीत में कंगन का इस्तेमाल केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों के प्रतीक के तौर पर हुआ है। फिल्मों में अक्सर कंगन प्रेम, प्रतीक्षा, सजना सवरना और स्त्री मन की भावनाओं को दर्शाते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में नायिकाओं के हाथों में खनकते कंगन उनकी खुशी और प्रेम का संकेत माने जाते थे। कई गीतों में कंगनों की आवाज को दिल की धड़कनों से भी जोड़ा गया है। लोकप्रिय गीतों में जैसे कंगना रे, बोले चूड़िया, ये गीत आज भी लोगों की यादों में बसे हैं। फिल्मों में कई बार नायक अपनी प्रेमिका को कंगन भेंट करता दिखाई देता है। ये उपहार केवल गहना नहीं, बल्कि विश्वास, अपनापन और वादे का प्रतीक है। हिंदी साहित्य में टूटे हुए कंगनों का प्रयोग कई बार टूटे सपनों, बिखरे रिश्तों या दुख के प्रतीक के रूप में हुआ है। वहीं खनकते कंगन जीवन, उत्साह और प्रेम की उपस्थिति दर्शाते हैं। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और लोक कवियों की रचनाओं में स्त्री भावनाओं के साथ कंगनों जैसी छवियां बार बार दिखाई देती है। भारतीय साहित्य में कंगन स्त्री की मौन अभिव्यक्ति भी माने गए हैं, जहां बिना शब्दों के भी उनकी खनक बहुत कुछ कह जाती है। हिंदी भाषा और लोक जीवन में भी कंगन का विशेष स्थान है। कई मुहावरे और कहावतों में भी इनका प्रयोग हुआ है। जैसे एक प्रसिद्ध कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वही कंगन बांधना इस लोकोक्ति का अर्थ माना गया है कि विवाह की बात निश्चित हो गई या फिर तैयारी शुरू हो गई। लोकगीतों और विवाह गीतों में भी कंगनों का विशेष महत्व रहा है। दुल्हनों के हाथों के कंगन उसकी विदाई, नई शुरुआत और भावनात्मक बदलावों को व्यक्त करते हैं। आज के आधुनिक संगीत में भी कंगन फैशन, स्टाइल और फैशन का हिस्सा है, लेकिन उनकी भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान अब भी कायम है।

श्रोताओं, कंगन केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहे, पुरुष में भी कड़े पहनने की परंपरा लंबे समय से मौजूद है। विशेष रूप से सिख संस्कृति में कड़ा आस्था, अनुशासन और पहचान का प्रतीक माना गया है, और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति के राजाओं के हाथों में भी हमेशा कड़े दिखाई दिए हैं। कंगन को केवल गहना मानना शायद उसकी पूरी कहानी को समझना नहीं होगा। साहित्य, कविता और भावनाओं की दुनिया में कंगन एक सुंदर रूपक यानी मेटाफर भी बन गया है। कंगन समय और स्मृतियों का भी रूपक हो सकते हैं। पुराने कंगनों में कई बार किसी माँ, दादी या प्रियजन की यादें बस जाती है, इसलिए लोग उन्हें केवल गहना नहीं बल्कि भावनात्मक धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं। यही कारण है कि कंगन भारतीय समाज में सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि संस्कृति, प्रेम, स्मृतियों और भावनाओं की खनक बनकर आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। भारतीय परिवारों में कंगन भावनात्मक रिश्तों से भी जुड़े होते हैं। माँ के कंगन बेटी को विरासत में मिलते हैं तो दादी के पुराने कंगन परिवार की यादों को संजोए रखते हैं। कई बार ये केवल गहने नहीं बल्कि पीढ़ियों की भावनात्मक धरोहर बन जाते हैं। कई घरों में ये परंपरा भी है कि विशेष अवसरों पर बेटियों को कंगन उपहार में दिए जाते हैं। ये केवल स्नेह नहीं बल्कि आशीर्वाद और अपनापन व्यक्त करने का एक तरीका है। समय के साथ कंगनों का रूप बदला लेकिन उनका महत्व आज भी वही है। पहले जहां पारंपरिक सोने, चांदी और कांच के कंगन अधिक प्रचलित थे, वहीं आज ऑक्सीडाइज्ड डिजाइनर, मिनिमल और फ्यूजन बैंगल्स युवाओं की पसंद बन रहे हैं। लेकिन कंगन आज भी श्रृंगार और भावनाओं के बीच की एक सुंदर कड़ी बनकर हाथों में सजे हुए हैं।

दोस्तों, अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर जाने से पहले शुरुआत में जो मैंने आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न किए थे उनका उत्तर दिए जाती हूँ। तो पहला प्रश्न था, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? इसका उत्तर है पुरंदर किला, जो पुणे जिले में स्थित है। आज का दूसरा प्रश्न था, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? जिसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी के साथ दोस्तों, दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अपर्णा को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। दिल है कि मानता नहीं, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं सड़क फिल्म से एक गीत कुमार सानू की आवाज में, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
3: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
3: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
3: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
3: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
3: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
3: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
3: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
3: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
3: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
3: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
3: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
3: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है
3: एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारु चले घास लेने।
1: घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारु चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारु चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारु चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
7: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
8: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
9: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
10: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
11: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
10: आजा खेलते हैं।
11: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
12: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
11: अच्छा, वो क्या?
12: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
11: हाँ, दूसरा क्या?
12: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
10: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में हो ताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यानी इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर हो। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: हमला करो,
6: हमला,
5: हमला!
2: जलाल उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: कोई नहीं, यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जावेद अख्तर की लिखी इस गजल के साथ। आवाज जगजीत सिंह की है।

सुगम संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में श्रोताओं बाइये सुनते हैं श्याम कुमार चौबे के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पारंपरिक मालवी लोक रचना के साथ।

0: भोले
1: आई श्रोताओं, आप सुनते हैं एक और भक्ति रचना, पारंपरिक मालवी लोकगीत, आवाज श्याम कुमार चौबे की।

0: श्रोता लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे श्याम कुमार चौबे के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली

0: दिल्ली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवी हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओ, एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। आदेश धारा 163 अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030, इंदौर नगर में बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने से अपराधों की रोकथाम एवं पातारसी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है। इंदौर शहर की जनसंख्या अन्य शहरों की तुलना में निरंतर बढ़ती चली जा रही है तथा वहीं बाहरी व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। पुलिस द्वारा जांच करने पर इस प्रकार से बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जांच में कठिनाई होती है। इस प्रकार अपराधों की रोकथाम व इन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। पूर्व में इंदौर से आतंकवादी संगठन के सदस्यों एवं बांग्लादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जिससे शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति के संकट का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इंदौर शहर में हर दिन जुड़ने वाली नई आबादी की जानकारी पुलिस थाने पर रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक संपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके। इन असामाजिक तत्वों द्वारा मकान कर्मचारियों के रूप में अवैधानिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किए जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जन सामान्य के जान माल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है, तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं भी व्याप्त हो रही हैं। इन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु इंदौर नगरीय सीमा में अग्रलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। किराएदारों की सूचना संबंधित मकान दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाएगी। इसके पूर्व मकान दुकान किराए से नहीं दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। घरेलू कामकाज व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना संबंधित मालिक संचालक विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ लिया जाए। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ अनिवार्य रूप से लिया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर भी रुकने वालों की जानकारी अवश्य दर्ज की जाए। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हों, उनकी सूचना संबंधित मालिक संचालक द्वारा तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, कोरियर का काम करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, इनकी जानकारी भी संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी सुरक्षा एजेंसी के मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दें, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लें। होटल लॉज धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराए से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में ICJS सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फॉरेंसिक ऐप से जानकारी सर्च की जाए। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना FRRO शाखा को दी जाए। चूंकि उक्त आदेश को जनसाधारण की सुविधा तथा होटल लॉज प्रतिष्ठान के लिए जारी किया गया है, अतः यह प्रभावशाली रूप से लागू किया गया है। आदेश से संतोष कुमार सिंह, पुलिस आयुक्त नगर इंदौर। श्रोतो, अभी आप सूचना सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ. यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जांच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब एक साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। आईपीएल में अब से कुछ देर में धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के आईटीआई मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम का सुनने वाला सभी किसान भाई बहन के कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। भाई बिछावा सिंचाई दवाई न कमाई का ताना बाना से बुनेली अपनी चाचम ने शुरू करे अपड़ो कार्यक्रम जिको नाव ची खेती न गृहस्थी। बात सबसे पहले सिंचाई की कि उंधाड़ा को समय चली रो तो पानी वालना में अपन सोयसा बठाण पड़े और ओका में या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY जो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है या घनी कारगर होएगा या 2015-16 में शुरू करी थी ने को मुख्य उद्देश्य यो छे कि हर खेत का पानी मिला आन प्रति बूंद में अधिक फसल हो तो यो एको मुख्य उद्देश्य छे इनी योजना को आन ड्रिप सिंचाई का माध्यम से स्प्रिंकलर का माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई करनु सिंचाई का क्षेत्र नख बढ़ाणु को रकबो बढ़ाणु आन एका में इनी योजना को सबसे अच्छो छे कि आपका सब्सिडी भी मिली रही 45-80% तक आपका अगर सिंचाई का उपकरण खरीदो तो का पर सब्सिडी दे। उद्देश्य यो छे कि जो छोटा ना सीमांत किसान भाई छे जिनका पास पानी को सोयसा नहीं है उनका यो साधन उपलब्ध कराओ ताकि फसल को उत्पादन बढ़ा। आना इन्हीं एका से अगर आप सिंचाई करोगे तो 20-60% तक आप पानी की बचत भी करोगे आना फसल की पैदावार भी होएगा। एकालेन यो भी बतावांगा कि तमका कई कई चाहिए तो भाई अपनो कागज होए आधार कार्ड होए बैंक खातो होए पासबुक होए जमीन का दस्तावेज होए असो पहचान पत्र होए ओखो लई जाइने न जानकार भाई छे वहाँ जाओ अने इन योजना को लाभ कसो लई सकज अपन का एक पक्की खातरी करो लाभ लो। आना एका में तरह तरह का छे भाई जस्ट जीना तरीका से माइक्रो इरिगेशन की तकनीक का बढ़ाणु तो उकालन भी छे सिंचाई का विस्तार करने का लेन भी छे वाटर शेड मतलब जल को जो अपन संचयन कराने ना साधन का निर्माण न का लेन भी छे। इनी योजना को लाभ लो आना पानी की बचत करो। भाई या बात तो करी आज अपने सिंचाई की दवाई की बात भी करांगा पण पहला अपन अपनी गाड़ी को धुरावा आन सुना यो प्रहलाद सिटी पाणे ने मंडली को गायलो प्यारो सो लोकगीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: संदेश का पहला अपन ने प्रहलाद सिंह टिपाणिया ने मंडली को गायलो प्यारो सो लोकगीत सुनियो, घणो आनंद भी आयो। आन भाई जिंदगी की गाड़ी हो कि अपना खेत खड़ा की गाड़ी हो, बैल्या तो मजे का होना चाहिए। आन अपना पशुधन अच्छो रहे ओका लेन एंटीबायोटिक लगाड़न, पर एंटीबायोटिक का दुष्प्रभाव भी हो, नौका से बचाव भी छे। एकाज पे आज अपन परिचर्चा सुनान कि पशुओं को एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से कैसे बचाएं। अपन इन परिचर्चा में शामिल हो रहे डॉक्टर RK बघेरवाल और डॉक्टर जायसी जोगी प्राध्यापक पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से।

0: डॉक्टर आर के बगरवाल पूर्व प्राध्यापक पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से छे। सुना ने पण या परिचर्चा किसान भाई नो नी अपन अपना यहाँ खेती तो करान सी साथ में अपन ढोर ढंका रखान पशुपालन को काम करान अन जब अपन पशुपालन को काम करान न अपना ढोर ढंका रखान तो हरी बीमारी भी हो हरी बीमारी हो तो अपन डॉक्टर के पास भी जावान न उनका टीका लगाड़ा एंटीबायोटिक डॉक्टर एक शब्द को इस्तेमाल करे वो भी देवान और कभी कभी फायदा का कारण भी देवान पर यो फायदो कभी नुकसान में बदली जाए तो एक ही जानकारी नहीं तो अपन को होती है न अपना जो वाचुरु छे उनका होती है क्योंकि वो तो मूक प्राणी छे पर उनका न ओको दुष्प्रभाव नहीं होय न हो तो कसो हो की जानकारी लेवा अन ओका बिना तरीका से बचे सके। आज एक ही अपन चर्चा कराए चर्चा के परिचर्चा कराए न आज हमारी परिचर्चा में शामिल छे डॉक्टर आर के बघेरवाल पूर्व प्राध्यापक विभागाध्यक्ष औषधि विभाग पशुपालन महाविद्यालय महू से अन साथ में छे डॉक्टर जायसी जोगी प्राध्यापक पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से पशुपालन महाविद्यालय महू से हमारा बीच में छे और इनका से इनाज विषय पर अपन जानकारी लेवांगा पर सबसे पहले परिचर्चा में शामिल होने का दुइने का धन्यवाद भी देवा और स्वागत भी करा। हम शुरुआत कराए डॉक्टर जयसी जोगी से कि हमने एक शब्द एंटीबायोटिक बात करी सबसे पहले तो जहन में याज बात आवे कि हमारा किसान भाई बहन जान लो चाहे कि एंटीबायोटिक हो कई और ये कसो काम का।
1: जी जी बहुत ही धन्यवाद सुनीता जी आपने मुझे ये मौका दिया और सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। सो एंटीबायोटिक्स जैसा कि आपने मुझसे पूछा तो जानवरों के स्वास्थ्य के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं बीमारियां जो होती हैं वो जीवाणु या विषाणुओं से होती है तो ये जीवाणुओं और विषाणुओं को रोकने के लिए हमें जिन पदार्थों का या जिन दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है हम उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये पशु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये पशु को बीमारी से बचाते हैं जो इन्फेक्शन होता है उससे ये बचाते हैं और उनकी सेहत में वृद्धि करते हैं। मृत्यु दर जैसे कि देखते हैं हम किसी भी जब बीमारी का बहुत ही प्रकोप हो जाता है तो उस वक्त जानवर बहुत ज़्यादा मरने लगते हैं तो यदि हम एंटीबायोटिक्स का सही उपयोग करेंगे तो हम मृत्यु दर में भी कमी कर सकते हैं।
0: एक आपने शब्द को सही इस्तेमाल करेंगे और आज हमारा जो परिचर्चा को विषय छे वो भी यो छे आपकी बात न से लगी रोज की यो बड़ो गुणकारी छे पर एक तरीका से यो भी छे की यो दुष्प्रभाव भी डाले तो हम डॉक्टर साहब आर के बघेरवाल साहब आपको स्वागत भी कराएं और आपसे यो जानो चाहन कि जब यो गुणकारी छे तो फिर यो दुष्प्रभाव कसो डाली सके।
2: देखिए सुनीता जी मैं किसान भाइयों और पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी दवा जब हम पशु हो या मनुष्य हो उसको स्वस्थ करने के लिए देते हैं तो यदि उस चीज का कम मात्रा या ज्यादा मात्रा देंगे तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति आती है धीरे धीरे कि अगर हमने शुरुआती तौर पे उस दवा की कम मात्रा दी जैसे आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स मनुष्यों में 3 से 5 दिन तक एक मेडिकल डॉक्टर लिख के देता है लेकिन यदि हमने मान लो 2 ही दिन दवाई दी तो प्रभाव तो आएगा उसका लेकिन थोड़े दिन बाद यह हो जाएगा कि वो संक्रमण उसको फिर से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों के साथ जो चीज हो रही है ये पशुओं में भी होती है। पशुओं में खासकर ये बात इसलिए आती है कि हमारे जो पशु चिकित्सक हैं जो कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत हैं लेकिन इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र पर गौ सेवक या सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी ये आजकल जो रजिस्टर्ड या पंजीकृत लोग नहीं है ये जब इन दवाओं का उपयोग पशुओं में करते हैं संक्रमण के दौरान तो ये पूरी दवाई नहीं देते उनको 3 दिन नहीं देते 5 दिन नहीं देते तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पशु आंशिक रूप से थोड़ा स्वस्थ हो जाता है लेकिन फिर से संक्रमण होने से फिर दवाई की क्वांटिटी जो है वो दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो दवाइयां उसको ठीक तो कर देती है लेकिन वो दवाएं जो है उसके दूध के माध्यम से जब मनुष्य में जाती है तो वो दवा की मात्रा मनुष्य के शरीर में पहुंचती है और ऐसी स्थिति में वो दुष्प्रभाव का कारण बनती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को पशुपालकों को कि ऐसी स्थिति में वो दवाई न पशु को असर करती है और न मनुष्य को असर करती है तो इसका मूल सिद्धांत ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनके पशु की चिकित्सा के दौरान एंटीबायोटिक दवाएं का उपयोग किया जा रहा है तो वो पूर्ण रूप से उसकी मात्रा खुराक सही दिशा में होना चाहिए।
0: आपने दुष्प्रभाव की बात करी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किना तरीका का दुष्प्रभाव है, बीमार रहना लगा, उनकी अक्षमता हो जाए, किना तरीका सा लक्षण दिखाना लगा कि एक किसान भाई या पशुपालक भाई यो जाना कि मैंने यह दवाई दी थी ओको यो दुष्परिणाम हुयो, जितो काम करनू थो एक पशु न वो नहीं करी पर या जितो दूध उत्पादन लेनू थो या जिनी टीम या जिनी मात्रा में होनू थो जिना गुणवत्ता को होनू थो जो पोषक तत्व होनू थो का अंदर वो काम के गिरावट हो, ये तरीको जाननू
2: चाहूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई दवा की मात्रा चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी दवा हो अगर पशुओं में उसकी जो मूल मात्रा से ज्यादा दी जाती है तो वो पशु को स्वस्थ तो कर देगी, लेकिन अतिरिक्त दवा जो है उसके दूध के माध्यम से जिसका उपयोग सबसे ज्यादा मनुष्य अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है तो ऐसी स्थिति में दूध में वो एंटीबायोटिक का प्रभाव पूर्व में ही हो जाता है और उसके शरीर में जाने से वो एंटीबायोटिक्स का कुछ अंश पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से प्रसारित होता है और यदि मान लो उस व्यक्ति को या उस मनुष्य को कोई संक्रमण होता है और बीमार होता है तो जब वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले यह होता है कि वो दवाई उसको असर नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम पशु चिकित्सा विज्ञान से ही शुरू होता है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों को ये समझना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ उनके पशु को स्वस्थ करने के लिए दी जा रही है वो पूर्ण रूप से ऐसे डॉक्टर के द्वारा दी जानी चाहिए जो पूर्ण रूप से पंजीकृत हो, अन्यथा उसका उपयोग नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहो। अब यो जानना चाहूंगा कि हमने दुष्प्रभाव का बारे में तो जान लियो पर एक अपना पशुपालक भाई किनी बात न को ध्यान रखा, डॉक्टर जायसी जोगी हम आपसे यह जानना चाहूंगा कि काई सावधानी रखा किना तरीका से अपना जो पशु छे उनकी देखभाल करा।
1: जी जी जी, तो सुनीता जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो एंटीबायोटिक मतलब 2 से 3 से 5 दिनों तक देनी चाहिए, पर यदि यदि पशु में किसी प्रकार का कोई सुधार अगर पशुपालक को नहीं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और संपर्क करने के बाद उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या दवाई में कुछ तब्दीली की आवश्यकता है। अगर है तो डॉक्टर जो है वो उनको उसी समय परामर्श दे सकते हैं, पर साथ में हम डॉक्टर से खुद भी सलाह ले सकते हैं कि क्या किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता है, जैसे कि आप मूत्र का करा सकते हैं, आप रक्त का करा सकते हैं। साथ में एक बहुत ही जरूरी टेस्ट के बारे में, परीक्षण के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे कि जब 3 से 5 दिन तक कोई भी एंटीबायोटिक प्रभावी तरीके से कार्य नहीं करती है तो ऐसे जब परिस्थिति बनती है तो हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एक टेस्ट होता है जो कि
2: वो जीवाणु के प्रति कौन सी एंटीबायोटिक प्रभावी है
1: जी,
2: ये आप परीक्षण करके पशुपालक को रिपोर्ट बता सकते हैं कि ये तुम्हारे पशु में ये समस्या थी और इसमें ये संक्रमण पाया गया और इसमें ये एंटीबायोटिक दवा इतने दिन तक देंगे तो उसमें रिजल्ट आपके परिणाम जो आएंगे वो अच्छे आएंगे।
1: जी जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। जी
0: आपने हमको बतायो कि किना तरीका से देखभाल करनी चाहिए। एक बात यह भी कि हमारे जो किसान भाई बहन छे एक सहज शब्द में बात करना टीका लगावे और टीका नमक आई दवाई ना कर वो उनका इतना मालूम नहीं रहते हैं टीका कारगर रहे यो भी उनका मालूम छे कि उनका से निदान हो जाएगा। हम टीका ने का बारे में भी जानना चाहूंगा कि कई टीका लगानो कारगर रहेगा और कसो कसो किनी मात्रा में लगानो चाहिए कहीं वो तो हमका हमारा जो पशु छे ढोडंकार छे उनका दुष्प्रभाव तो नहीं डालेगा, तरीको कई छे यो आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी जी बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछा सुनीता जी आपने। जैसा कि टीके के बारे में, तो टीके के लिए सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगी वो ये है कि बीमारी से बचाव जो होता है वो ज्यादा भला होता है। यदि हम समय समय पर टीकों को अगर हम पशुओं में लगवाएंगे हमारे पशुपालक तो ये बीमारियों को हम 80 से 90% तक कम कर सकते हैं। जिन जानवरों में ये टीके जो है वो नियमित तरीके से नहीं लगाए जाते हैं वही संक्रमण के लिए ज्यादा प्रोन रहते हैं। तो यदि हम समय समय पर टीके को लगाएं और जैसे कि आपको पता शायद हमारे पशुपालक भाइयों को पता होगा एक टंगिया रोग होता है और बघर्रा भी कहते हैं, गलघोटू जी जी गलघोटू भी कहते हैं, तो ऐसी और खुरपका मुंह पका रोग जो है ये तो विषाणु रोग है, परंतु इन 3 बीमारियों के लिए मुख्यतः टीका उपलब्ध होता है और बारिश आने से पहले पशुपालक जो है वो इन टीकों का इस्तेमाल अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं।
2: तो डॉक्टर जायसी इस संदर्भ में आपने जो टीकाकरण की बात करी है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो टीके लगाए जाते हैं क्योंकि आप प्रतिवर्ष मौसम के हिसाब से लगाए जाते हैं या इनको किसी विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है, इसमें हमारे पशुपालकों को खासकर क्या आप कहना चाहेंगी, क्या जानकारी देना चाहती हैं?

0: जी, जैसे कि बारिश का जैसे ही मौसम आता है तो उस वक्त पशु जो होते हैं वो काफी तनाव ऐसे जो, क्योंकि एक ऐसा ह्यूमिडिटी या कह सकते हैं कि काफी उमस जैसा जो माहौल होता है तो पशु को काफी वो तनाव का ऐसी परिस्थिति पशुओं में बन जाती है। तो उसके पहले, आने के पहले ही यदि हम पशुओं में टीकाकरण करा
1: मतलब बरसात
0: देंगे,
1: की शुरुआत के पहले।
0: जी जी बरसात की शुरुआत के पहले ही यदि हम टीकाकरण को, कार्यक्रम को अगर संपन्न करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरी ठंड तक, पूरी गर्मी आने तक हमारे पशु जो होंगे वो स्वस्थ रह सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपने हमको टीकाने के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ओकासी तो लगियो हमको कि हमारा जो पशु छे वो सुरक्षित छे। तो फिर बात यह आवे कि अगर वो सुरक्षित छे तो उनको दुष्प्रभाव कसो हो सके, कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक छे जिको दुष्प्रभाव अपना जो ढोड़ंकर छे उनका न पोगा, यो प्रश्न मारा छे बघेरवार साहब आपका लेना।
1: देखिए, दुष्प्रभाव और टीकाकरण दोनों अलग अलग शब्द हैं। जैसा अभी डॉक्टर जयसी जोगी ने बताया कि टीकाकरण से हम बीमारियों को रोक सकते हैं। जैसे अगर ये टीका इस बीमारी के विरुद्ध हमने लगा दिया, जैसे इन्होंने बताया गलघोंटू का हम बरसात के पहले लगाते हैं, खुरार रोग या खुरसटा रोग का हम ठंड में लगाते हैं, या अन्य बीमारी जो मौसम के हिसाब से होती है, यदि उनके पहले हम उसको टीकाकरण लगा करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि चिकित्सा से रोकथाम बेहतर है। ये पद्धति पे हम काम करते हैं। और उस टीकाकरण से लगाने के बाद पशु के शरीर में उस बीमारी के विरुद्ध इस प्रकार के ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो बाहर से आने वाले संक्रमण को पहले से ही रोक देते हैं, और पशु जो है मौसम के हिसाब से उस बीमारी से ग्रसित नहीं होता। अब रही बात, आपने दूसरी बात जो करी आपने दुष्प्रभाव की, तो टीकाकरण में दुष्प्रभाव का कोई ऐसा प्रश्न पशुपालकों के लिए लागू नहीं होता है। पर इतना जरूर है कि पशुपालकों को मौसम के हिसाब से पशु औषधालय या पशु चिकित्सक से संपर्क कर मौसम के अनुसार वर्ष भर जो टीके कराते हैं वो सारे पशुओं को एक साथ टीकाकरण कराएं, कोई जानवर छूटना नहीं चाहिए उसमें। खासकर एक समस्या आती है कि ऐसे आपने देखा होगा वर्ष में खासकर बरसात के बाद या जब ठंड की शुरुआत होती है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो हैं पशुपालक दूसरे राज्यों से दुधारू पशु खरीद के लाते हैं। तो उस वक्त ये देखना जरूरी है कि उनका वहाँ पे उस क्षेत्र में उस बीमारी के विरुद्ध जो कि उस मौसम की या उस व्यक्तिगत रूप से ही कहूँगा कि उस मौसम के हिसाब से बीमारी जब होती है वो, तो उसका टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो टीकाकरण का प्रमाण पत्र यदि वहाँ से वो लेके यहाँ लाते हैं उनको, तो ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो टीकाकरण का कोई दुष्प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है।
2: जो एक भ्रम हुई रो तो हमारा किसान भाई या सुनने वाला ना का मन में कि टीकाकरण से भी हुई सके, तो वो मखा लगे कि अब भ्रम दूर हो गया होगा। कई बार हम ऐसा सुना है कि हमको दूध उत्पादन का लेन जो हमारा पशुपालक भाई छे, कई बार ऐसा कि टीका लगावा तो दूध उत्पादन बढ़ी जाए, या कई बार ऐसी सलाह दी जाए कि या गोली खवाड़ो तो उनका क्षमता बढ़ेगा, तो यो भी करे। फिर कई बार हमको यो भी सुनना मावज हमारा जो वैज्ञानिक भाइयों छे वो कह कि नहीं, टीको नहीं लगानू या इंजेक्शन नहीं लगानू चाहिए क्योंकि दूध छे वो दूषित हुई गयल छे। तो एक भ्रम की स्थिति छे कि हमारा किसान भाई कड़क है, लगाड़ा कि नहीं लगाड़ा, या लगाड़ा तो किना तरीका से, उसको तरीको कौन सो है, समय कौन सो है, और सही तरीका से लगाड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा वैज्ञानिक भाई ने अनुसंधान करेला छे उनको उपयोग वो अपनी गौशाला तक लाई सका।
1: देखिए, इसमें मेरा सभी किसान भाइयों और पशुपालकों से एक ही निवेदन है कि किसी भी तरह की अगर पशुओं में समस्या आती है तो सबसे पहले तो वो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आम तौर पर ये होता है कि किसान भाई पशुपालक अपने स्तर पर उसकी चिकित्सा कर लेते हैं, और कई बार उस बीमारी की तीव्रता और उस पर कौन सा इलाज सुलभ होगा, प्रभावी होगा, या कौन सी दवा उपयुक्त होगी, ये निर्णय जब वो इतना देर से पशुपालक जो है पशु चिकित्सक के पास जाता है तो उस वक्त ये परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला दायित्व पशुपालकों का ये है, जैसे ही उनका पशु अस्वस्थ होता है, खाना पीना बंद कर दे, या आमतौर पर लक्षणों के आधार पर हमारे किसान भाई पशु को देख के पहचान जाते हैं कि आज इसने खाना नहीं खाया है, इसके शरीर में बुखार आ रही है, ये बार बार पेशाब कर रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, तो ये लक्षण होने पर वो अपना दिमाग उपयोग नहीं करें। आज मेडिकल साइंस में भी यही बात आती है कि मनुष्य कुछ भी होता है वो सीधा मेले डॉक्टर के पास ले जाता है। तो पशुपालक भी इस बात का ध्यान रखे, ये समस्या होने पर सबसे पहले वो पशु चिकित्सक से संपर्क करे, वहाँ पर उसका काम बिल्कुल सही होगा। अभी डॉक्टर जयसी जोगी ने बताया कि जो भी दवाएं का उपयोग हम करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक के

0: परिणाम को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पशुपालक भाई सबसे पहले ये देखें कि जो व्यक्ति उनका पशु का इलाज कर रहा है और जो एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कर रहा है उसकी कितनी मात्रा कितने दिन तक कब कब देना चाहिए, ये पशु चिकित्सक की राय के बिना उससे इलाज नहीं कराना चाहिए। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक गौ सेवक है जिसको एंटीबायोटिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि एंटीबायोटिक किस तरीके से शरीर में जाके बीमारी के जो कीटाणु से लड़ती है, तो वो क्या करता है 2 दिन की जगह कई बार 5 दिन दे देता है, 5 दिन की जगह 7 दिन दे देता है। वो जानवर है, बोलेगा तो कुछ है ही नहीं, बीमार है तब भी नहीं बोलेगा, स्वस्थ है तो भी बोलेगा। तो सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को जागरूक इस बात के लिए होना चाहिए कि जो इलाज उसका किया जा रहा है कौन सी दवाई है। मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा, अगर एक डॉक्टर साहब ने इलाज कराया, यदि वो इलाज प्रभावी नहीं हुआ तो वो पर्चा रह गया, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो पशुपालकों को भी ये चाहिए कि जो उनके पशु को चिकित्सा हो रही है उसका रिकॉर्ड लेकर उनको बहुत उनका एक नैतिक दायित्व बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: बिल्कुल सही बात है। और अगर हम गौशाला की बात कराएं और अगर हम को उद्योग का लेने की बात कराएं, तो अगर हमारा पशु कमजोर होएगा या वो उतो अच्छो उत्पादन हमको नहीं दे पावेगा, तो सीधो सीधो फर्क हमारी जो आर्थिक छे वो काबो पड़ेगा। हम बात करें डेयरी उद्योग को लेना ना, हम बात करें बेकरी उद्योग को लेना ना, और खान पान का लेना भी, क्योंकि हम भारत एक सोचिए कि दूध का बिना कोई मीठो व्यंजन बढ़ी नहीं सकते हैं। और एक दूध उत्पादन को व्यवसायिक जो छे वो बड़ो कारगर छे। और एकालेन दूध की गुणवत्ता का लेन, ओका वसा की मात्रा का लेन, आपने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी कि पूरो एक रिकॉर्ड बनानो पड़ेगा, रजिस्टर रखनो पड़ेगा कि ताकि हम ओका नियमित रूप से स्वास्थ्य को निदान करी सके।
0: अभी डॉक्टर जयसी जोगी ने बताया कि वर्ष भर जो बीमारियां होती दुधारू पशु में वो जीवाणु से भी होती है, विषाणु से भी होती है, अन्य कारणों से भी होती है। तो अन्य कारण में कई बार ऐसे होते हैं कि जो लक्षण पशु में आते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी के कारण है या पशुपालक की लापरवाही के कारण है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने बताया आपको कि पशुपालकों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पशुओं में यदि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव को रोकना है तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये रखना कि एंटीबायोटिक कौन से उपयोग कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक उस संक्रमण के विरुद्ध बीमारी को दूर करने की क्षमता एंटीबायोटिक रखती है या नहीं रखती है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितनी देना चाहिए, कितनी नहीं देना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ये सब पशुपालकों को जागरूक होकर पशु चिकित्सक से पूछना चाहिए। तब जाके आपकी जो एंटीबायोटिक का जो दुष्प्रभाव है उस पर हम काफी हद तक नियंत्रण करेंगे और जिसका प्रभाव सीधा मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: एक बात मारा यहाँ जहन मारू आई रही कि कई बार कही कि पर साल पशु बीमार हुई हो, रोडंकार हुई हो, हमने 2 दिन दी अच्छो भलो चंगो हुई गो, अब अपना पास गोली रखेली छे, अब पर साल भी अपन ने वाद दी थी, फिर मौसम आयो तो वा रखी न दे दी। हम पर्ची पर यो भी नहीं देखता कि वह दवाई कितना दिन की छे कितना दिन की नहीं छे। हम आपसे यो भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई पशुपालक भाई छे न ढोर डंकार के कोई गोली दे रहे छे तो वो किनी बात न को पर्ची पर ध्यान रख, पहले पढ़ ले या जो पढ़े लिखे भाई छो को बते दे या जो जानकार भाई छे कसो अपना गोली दवाई दे अपना ढोर डंकार न का जाय सी जी आपसे हम यो जानना चाहूंगा।
2: जी जी सुनीता जी, जैसे कि जो पर्चा होता है जो डॉक्टर साहब जो पर्चा लिख करके देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार वही पर्चा आपका काम दे। तो जब पशु हर बार बीमार हो तो पशु चिकित्सक का परम कर्तव्य तो यही है कि वह हर बार पशु चिकित्सक से संपर्क करे और नया पर्चा बनाए। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि दवाइयों का जैसे 2 दिन हमने इस्तेमाल कर ली और 3-4 डोज जो है उसके बच गए हैं तो हम सोचते हैं अगली बार भी उसको इस्तेमाल करें, हम जरूर कर सकते हैं, पर हमें पहले दवाई की जो पीछे जो जानकारी लिखी होती है उसमें यह देखना अति आवश्यक है कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई है। और जैसे अगर रखी हुई दवाइयां भी हैं तो अपनी मर्जी से फिर भी पशु को ना दें, उस वक्त भी जरूर एक बार पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसके बाद ही दवाई जो है पशुओं को दें।
0: डॉक्टर जयसी, मैं इस संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि हमारे पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा होता है जैसे दुधारू पशु को न्यूमोनिया हो गया या फेफड़ा कृमि जैसे कृमि से भी वो न्यूमोनिया हो जाता है, तो न्यूमोनिया संक्रमण के कारण हुआ है या पशुपालक की लापरवाही के कारण? अब पशुपालक की लापरवाही कैसे, वो जानवर को तेल पिला देता है, हींग डाल के तेल पिला देता है, लौंग डाल के तेल पिला देता है। तो इस प्रकार की जो गलतियां पशुपालक भाई करते हैं उसके कारण जो है पशु चिकित्सक को कई बार सही जानकारी नहीं मिलती है। और पशुओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपालक जितनी अच्छी जानकारी पशु चिकित्सक को देगा, मैं कह रहा हूँ प्रारंभिक तौर पर परीक्षण में वो काफ़ी मददगार साबित होती है। तो जैसा कि आपने डॉक्टर जायसी आपने बताया कि इस संदर्भ में आपको जो भी हम दवाएं को उपयोग करते हैं उसकी गुणवत्ता, उसका प्रभाव, उसकी कितनी मात्रा है, ये बिना पशु चिकित्सक की राय के उपयोग में नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहे आप ना। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें या हमारा पूरा विश्व की बात करें तो वो भी ये चाहे रहा कि अब परंपरागत से तो हम हमारा पशुपालक जो भाई छे वो ध्यान रखी रहा, पर जैसो डॉक्टर साहब ने कहो ऐसी दवाई को उपयोग कर ले जो आगे जाए ना हमारा पशु का नुकसान करे, तो सही मानक तरीका को उपयोग करी ना अपना जो ढोर डंकर छे उनको बचाव करी सके और जो एंटीबायोटिक न को जो दुष्प्रभाव छे से अपना पशु न का दूर भी रखी सके। पर एक बात यहाँ हुआ कि क्यों नहीं हम उपचार करने का पहला उनका बचाव की तरफ ध्यान देवा और एंटीबायोटिक न को इस्तेमाल हमके करनू नहीं पड़ा ताकि हम दुष्प्रभाव से बचे ला रहा, यो भी एक तरीको छे एंटीबायोटिक का दुष्प्रभाव से बचने का। तो हम आपसे यो जानना चाहेंगे जायसी योगी जी कि ना तरीका से हम हमारी गौशाला को रख रखाव करा अच्छा से अच्छा तरीका से कि हमारा पशु स्वस्थ रहे।
2: जी जी रख रखाव तो बहुत ही आवश्यक है ही सुनीता जी, लेकिन बीमारियों से बचने के लिए और अगर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहते हैं या बिल्कुल करना ही नहीं चाहते तो उसके लिए तो सर्वप्रथम बेस्ट जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो है टीके का इस्तेमाल।
0: बहुत बढ़िया।
2: यदि हम नियमित रूप से हर साल पशुओं को बारिश से पहले यदि हम सभी पशुओं का टीकाकरण करते हैं तो ये बीमारी को जैसे मैंने पहले भी बताया था 80-90% तक हम उसको रोक सकते हैं।
0: कहने का मतलब ये यदि आपने टीकाकरण कर दिया और वो बीमारी से पशु के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई तो ऐसी स्थिति में जब बीमारी नहीं होगा वो तो हमें एंटीबायोटिक दवा का उपयोग।
2: जी जी बिल्कुल।
0: और महत्वपूर्ण बात है सुनीता जी ने भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात उठाई है, ये अभी कुछ महीनों पहले समाचार पत्रों में काफी व्यापक वैश्विक स्तर पर समाचार छपा और उसमें मूलभूत यही बात उभर के आई है कि पशुओं में जो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है वो ज्यादा घातक है बजाय मनुष्यों में एंटीबायोटिक दवा के उपयोग के लिए। उसका कारण यह है कि मेडिकल साइड में मेडिकल डॉक्टर एक मरीज को वो दवाई जो एंटीबायोटिक दिखता है वो लिख के देता है कि 2 दिन देना, 3 दिन देना, 4 दिन, 5 देना, लेकिन पशुपालन में इस चीज़ का अभाव है। इसके लिए पशुपालकों को स्वयं जागरूक होकर पशु चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
1: बिल्कुल सही कहो आप ना, और तब हम अपना जो पशु छे उनको इना एंटीबायोटिक का दुष्प्रभाव से बचा सकें। डॉक्टर आर के बकेरवाल पूर्व प्राध्यापक व विभाग अध्यक्ष औषधि विभाग पशुपालन महाविद्यालय महू से अन्य साथ में डॉक्टर जायसी जोगी प्राध्यापक पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से आप हमारा बीच में आया और आपने हमारा पशुपालक भाई बहन का इतनी अच्छी विस्तार से जानकारी दी, एकालेन आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अपन ने सुनी या परिचर्चा को विषय तो पशुओं को एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से बचाएं। डॉक्टर आर के बकेरवार पूर्व प्राध्यापक आन विभाग अध्यक्ष औषधि विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से अन डॉक्टर जायसी जोगी प्राध्यापक सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से परिचर्चा में ये प्रतिभागी था और इन जानकारी दी। आन इन्हीं परिचर्चा का बाद मन कर रोज की एक लोकगीत अरु सुने लेवा जो गायलो छे तारा सिंह डोडवे अनोन की मंडली में सुना जो रामदास की।

0: अभी अपन ताराशी डोडवा न मंडली को गायलो लोकगीत सुनियो अन मारा पास मंडी ने का भाव आई गेल छे तो घऊं की आवक रही 2804 अन एक जो भाव रह्यो वो न्यूनतम रह्यो 2100 से लगाई ने 2800 अन मॉडल भाव रह्यो 2450 चना की 2798 क्विंटल आवक हुई भाव रह्यो 6000 से लगाई ने 8710 अन मॉडल भाव रह्यो 73 चना की 274 क्विंटल आवक हुई अन न्यूनतम भाव रह्यो 3630 से लगाई ने 7360 अन मॉडल भाव रह्यो 6400 मूंग की 108 क्विंटल आवक रही अन भाव रह्यो 4500 से लगाई ने 8295 मॉडल भाव रह्यो 7500। तो यो मंडी ना का भाव था संयोगी तागंज की उपज मंडी थी। आवा घड़ी इशारों कर रही कि अपन सबने से विदा लेवा जाजम का अवेरा सुनीता का सबे भाई बंड का राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से रूली किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
6: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद इन द ब्रिक्स फ्रेमवर्क। एक्सलेंसीज, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
3: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल

0: चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा,
0: जी
1: अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खास तौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले उसके जवाब में, तो उसमें ये भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से,
0: जी
1: और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खास तौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है।
0: जी
1: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
0: जी
1: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर, उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं और खास तौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है, और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है ब्रिक्स A20 के बारे में एक सम्मेलन होगा,
0: जी
1: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलेटरल सिस्टम है जो अभी, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत सी संस्थाएं हैं, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, तो
0: जी
1: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी, और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
0: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा, और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
1: जी, भारत ने तो पहले से कहा है, और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
0: जी
1: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
0: जी
1: वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है। ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी, और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर, उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर, एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, और बाकी जो देश हैं, इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा, और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
0: जी
1: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है। तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है, और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, इनफैक्ट जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं। तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
0: जी
1: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो,
0: जी
1: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
0: जी
1: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि उसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है, और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे ये है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारे जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
0: जी
1: सब जगह

0: पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं, तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे, अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में, कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है, तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी, शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं को राहुल तिवारी का नमस्कार। खूबसूरत सी शाम, बहती हुई हवा, तारों की झलमलाहट और दिल के नज़दीक उनकी यादों का बदस्तूर जारी वो कारवां। उनकी यादें जिनसे दिल कभी भरता ही नहीं, उनकी यादें जो दिल को एक अलग मकाम पर लिए जाती हैं, उनकी यादें जिनको दिल सुकून के साथ बार बार दोहराता रहता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उनकी याद आई सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

आग लहरा के चली है, उसे संदल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। और तुम छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो।

इश्क प्यार मोहब्बत जिसमें वादा दोनों ने किया था हमेशा साथ रहने का हमेशा साथ चलने का इस प्रकृति की तरह इस धरती की तरह इस हवा की तरह मगर फिर क्यों एक किसी और को छोड़कर दूर चला गया। ठंडी हवा महकी फजा नर्म चांदनी शब्द तो बस एक थी जो तेरे साथ काटती।

दिल तोड़ कर वो पूछते हैं कि हाल कैसा है, कोई उन्हें कैसे ये बताए, क्या इससे बड़ा सितम और भला क्या हो सकता है।

वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उनसे बात करते। और किसी से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था, किसी ने बात की होती तो उनसे बात करते।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल ने फिर याद किया। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरूषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the event is building for resilience.

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रगीत। दिलिक मंदिर, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं अमानुष फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, इंदिवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत।
1: कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि उस उछल कूद के पीछे, उस हंगामे के पीछे।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रकीत।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने मन भावन है।

नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन और आपकी ढेर सारी फरमाइशों के साथ। आपके लिखे हुए खत हमारे सामने हैं। आपकी पसंद जो है वो आप तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी ही देर की मुरीद हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे श्रोता नियमित रूप से जो हमें पत्र लिखते हैं और उनके नाम तो हम कार्यक्रम में जाहिर करते ही हैं, आप तक पहुँचाते ही हैं, लेकिन नए श्रोताओं की भी आकाशवाणी को ज़रूरत है और हम सबको, आकाशवाणी परिवार को, नए श्रोताओं की आवश्यकता है। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कार्यक्रम शायद सुनते भी होंगे अलग अलग माध्यम से, जैसे अपने रेडियो सेट पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से, और अब तो आकाशवाणी इंदौर जो है वो विश्व भर में कहीं भी जो है ऐप के ज़रिए सुना जा सकता है। तो खासकर हमारे वे श्रोता जो भारत में हैं और ख़त के ज़रिए हमसे अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं, अपनी फरमाइशें आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, या अपने जो ख़ास लोग हैं बस उन तक नज़र करना चाहते हैं, वे हमें ख़त ज़रूर लिखें। हमें आपके ख़तों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पता और तरीका मैं बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, एक साधारण सा पोस्ट कार्ड लेना है, उस पर लिखना है द्वारा, उसके बाद कार्यक्रम का नाम, जैसे मन भावन कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, मालवा हाउस,

इंदौर मध्य प्रदेश। बहुत ही सरल सा पता है, इंदौर का पिन कोड जो है वो आप ज़रूर लिख दें 452001। और इस पते पर अपनी पसंद का गीत, फरमाइश, अपने चाहने वाले के नाम, परिवार वालों के नाम आप हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ पहली फरमाइश जो है कार्यक्रम की वो आप तक पहुंचाते हैं। रिधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला बोराखड़े, मंगेश बोराखड़े, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, और छाबड़ा राजस्थान से हमारे श्रोता आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। आपकी फरमाइश पर बुढ़ा मिल गया इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार राहुल देव परमन।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सूरज से मोहम्मद रफी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान मालाकार, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा, और गौरीनगर इंदौर से हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे अन्य श्रोताओं की फरमाइश की ओर। जातुका किशनपुरा से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, और खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू और इनके परिजन। आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत, यह लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

धरती कहे पुकार के। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद आप सभी की। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया, अलमा, सालिया, शोएब, पोइत्रा, मुस्तबा, रऊफ और शाहिद खान। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इंदौर से हमारे श्रोता हैं बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी, निधि। और इंदौर से ही हमारे एक और श्रोता हैं मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका परमार, वर्णिका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अद्विया, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा और रिजू और हेमंत चौहान।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन, और हम आप सभी को बता दें कि मन भवन कार्यक्रम में आप भी जो इस वक्त हमें रेडियो के ज़रिए या न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं, और आपके ख़त अगर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं तो आप भी हमें ख़त लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सामान्य से पोस्ट कार्ड पर आपको लिखना है कार्यक्रम का नाम यानी मन भवन, उसे भेज देना है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर मध्य प्रदेश, इस पते पर। इंदौर का पिन कोड है 452001। जिस तरह से ये फरमाइश हम तक आई है, उम्मीद करते हैं कि आपकी फरमाइश भी हम तक ज़रूर पहुँचेगी। अगली फरमाइश किन की है? अगली फरमाइश है रोकलेश्वर से, रोकलेश्वर श्रोता संघ छत्रपति साहू नगर हिंगोली से, पेंटर रामचंद हिंगोले, सिद्धांत हिंगोले, टिक्कू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा और गौतम हिंगोले की। महाराष्ट्र से ही एक और पत्र हमें मिला है, पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू, रोहित सोनू मुनू ठोके का। एक और पत्र महाराष्ट्र से ही है, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, आप धाड़ी नांदुरा से हमें खत लिख रहे हैं। और पित्रामल जिला उज्जैन बोरखेड़ा से हमें पत्र लिखा है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत ने। आइए आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीतकार है रवि और गीतकार साहिर लुधियानवी।

0: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गुलामी फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। पसंद हमारे इन श्रोताओं की। कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, करिश्मा, अंकिता और अनिकेत चौहान। चंद्रनगर सतारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रीमेण वाघमारे। और खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। साथ ही साथ एक पत्र और इस कार्यक्रम, इस गीत के लिए हमें भेजा है हमारे श्रोता मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, ननुराम कंसोटिया और नंद किशोर कंसोटिया और दीपक कंसोटिया ने। और एक पत्र और हमें इसी गीत के लिए मिला है जो हमारे श्रोता हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
1: और तुम?
2: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिकर करो और मेरी फिकर छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
1: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
2: कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है, कोई शक?

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें भेजी है राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे ने। मॉडर्न टाउन करनाल से हमें पत्र लिखा है मीनाक्षी तिवारी, सुधीर नूतन ने। घंटाघर चौक खंडवा से गीत को सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आपको सुनवा रहे हैं धर्मा फिल्म से एक कव्वाली आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल, सोनी ओमी का संगीत।

0: मुझे तू भी न जाने,
1: बदन मेरा है कुंदन,
0: मेरा दिल भी है चंदन,
1: मैं चंदन की खुशबू हूँ,
0: मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ, बहू हूँ, इशारों को अगर

आयुश्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म से ये कव्वाली, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार, और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति और मीनूराज।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम फरमाइश के रूप में सुनते हैं इनकी फरमाइश। इंदौर से हमारे श्रोता अनिल कौचाले, साभ्या, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी, मीनू। इंदौर से हमारे अन्य श्रोता हैं प्रकाश सेन, सुनीता सेन, रवि सेन, कृष्णा और इनके परिजन। खरगोन से ध्रुवांश सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे। आप सभी को सुनवा रहे हैं धूल का फूल। इस फिल्म से ये कव्वाली लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मन भावन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब शास्त्रीय संगीत में सुनते हैं विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज आपने सुना विदुषी लक्ष्मीशंकर का गाया राग जोग। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग